0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
1: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

ईरान जो रिचार्ज थियल यूरेनियम हर हाल में कब्जे में वठंदासीं, उन मामले ते ईरान खे वधीक डर न ॾिनी वञे। असां सिर्फ़ एतिरो चाहियूं था ईरान वटि एटमी हथियार न हुजणु घुर्जनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी नेवी सुठो कम करे रही आहे, को बि जहाज़ ईरान ताईं न पियो अची सघे। नाकाबंदी वसीले आबनाए हुर्मुज़ जो मुकमल कंट्रोल अमरीकी नेवी वटि आहे। आबनाए हुर्मुज़ मां जहाज़नि खां टूल टैक्स वठण वारो मुतालबो सफ़ारती मुआदे खे नाक़ाबिले अमल बणाए छॾींदो। ईरान एटमी मामलनि ते अमरीका सां ॻाल्हाइण वारनि ख़बरुनि खे सख़्ती सां रद्द करे छॾियो आहे। ईरान जे परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त रिचार्ज थियल यूरेनियम अमरीका हवाले न पियो कयो वञे। ॻाल्हियूं सिर्फ़ लिबनान समेत ॿिया जंगी महाज़ ख़तम करण बाबति हली रहियूं आहिनि। एटमी मामलनि ते हलंदड़ अफ़वाहुनि जो हक़ीक़त आहे। वफ़द ॻाल्हियुनि लाइ अॼु ईरान वेंदो। पाकिस्तानी अख़्तियारनि जो ॻाल्हियुनि जे बहितर नतीजनि जी उमीद आहे। अमरीकी परदेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि जा मुस्बत इशारा मिली रहिया आहिनि। ॻाल्हियूं मुस्बत अंदाज़ में हलंदड़ आहिनि। असांजा इतिहादी हुन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। ॾिसजे त ईरान सां मुआदो थिए थो या न। ईरान सां मुआदो न थियो त वधीक फ़ैसले जो अख़्तियार सदर ट्रम्प वटि आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन अक़वी जी तहरान में ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास सिराग़ची सां मुलाक़ात। खिते जी सूरत हाल समेत सालसी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिब मोहसिन अक़वी ऐं अब्बास सिराग़ची विच में जंग जे ख़ात्मे बाबति तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि। मोहसिन अक़वी जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही ॿियो दौरो आहे। पाक जी सफ़ारती लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण ते इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परडेही पॉलिसी जो बुनियादी थंभ आहे। तरक़ी जो रस्तो पाकिस्तान ऐं चीन जो गॾियल ख़्वाबु आहे। ॿिन्ही मुल्कनि हमेशा हिक ॿिए जे बुनियादी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कयो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त ख़िते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में पाकिस्तान मर्कज़ी किरदारु अदा करे रहियो आहे। चीन बि पाकिस्तान जे सालसी वारे जी कोशिशुनि जी हिमायत कई आहे। गॾियल कोशिशुनि सां तरक़ी जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठो रहियो। वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती वधीक मज़बूत थी। सी पैक पाकिस्तान जी मईशत ऐं रोज़गार जी फरहमी लाइ अहम आहे। मुल्क में जटादार अमन जे क़याम लाइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी। वतन जो अमन अमान शहीदनि ऐं गाज़नि जी क़ुर्बानीनि जो नतीजो आहे। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल सैद आसिम अली जो जी एच क्यू में शहीदनि ऐं गाज़नि खे एज़ाज़ ॾियण वारी तकरीब जो ख़िताब। एस पी आर मूजिब फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि ऐं गाज़नि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल चयो त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल पारां कानून लागू कंदड़ इदारनि जे दहशतगर्द ख़िलाफ़ भेड़ में लगातार कार्रवाई ते वाखाण बि कई। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 48 कलाकनि दौरान वधीक 23 दहशतगर्द। सिक्योरिटी फोर्सेस दताखेल स्पेन वाम ऐं बनू समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ताईं ऑपरेशन जो दायरो वधाए छॾियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब कार्रवाई दौरान दहशतगर्द

0: जे कब्जे मां हथियार गोला बारूद धमाकेदार मवाद ऐं तयार थियल IED पिण बरामद कई वियूं। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन दौरान ज़मीन खां सिरंगुनि ऐं मेनकरनि जो हिकु पेचीदा नेटवर्क ॻोल्हे हुनखे तबाह कयो। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जा समूरा गिरफ़्तार मेंबर इसराइली क़ैद मां आज़ाद थी विया। इसराइल खां तुर्किया मुंतकिल पाकिस्तान गज़ा वासनि लाइ खाध खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जी बदसलूकी वारे वाक़िए जी मज़म्मत कई आहे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला खे रोकण ऐं कारकुननि सां बदसलूकी आलमी कानून ख़िलाफ़ आहे। स्पेन ऐं इटली पारां बि इसराइली क़दमनि जी मज़म्मत। स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो आहे त फ्लोटिला जे कारकुननि जे तज़हीक क़बूल जोगी न आहे। सिंध कैबिनेट कराची जे BRT मनसूबे लाट 2 जो कम टेस्ट करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। कम में देर ते अॻूणो ठीको रद्द। FWO खे कम ॾियण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वधीचे यूनिवर्सिटी रोड जो कम 90 ॾींहं अंदरि मुकमल करण जी हिदायत। जेल में क़ैदियुनि जे खाधे पीते लाइ वाधू ग्रांट मंज़ूरी। कणक जे ॿिए सूबे ॾांहुं मुंतक़िली ते पाबंदी लागू। सीनियर वज़ीर शब्दील इनामेन चयो आहे त
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: وثقافه السجي
1: GFM 88 كي آواز
0: GFM 88 نتورك سند كي آواز

1322-1322-88 ते बि तव्हां असांखे कॉल करे पंहिंजो नालो लिखाए सघो था। ऐं साईं मुंहिंजा हिकड़ी इल्तिजा, हिकड़ो अर्ज़ु, त तेज़ रफ़्तारी या वन व्हीलिंग करणु कंहिं बि पासे खां सुठो ऐं वणंदड़ अमल नाहे। या रोड ते हिक ॿिए खां गोहे खटण जे चकर में न पइजे, ऐं अव्हां जे सवारी में वेठल मुसाफ़िर अव्हां खां कॾहिं बि न विसरणु घुर्जनि, जंहिं जा ज़हन उन वक़्त बेसुकून थी वेंदा आहिनि ऐं जंहिं वक़्तु अव्हां स्पीड खे वधायो था। तेज़ रफ़्तारीअ जो अंजाम सदाई ॾुखायतो हूंदो आहे, उन लाइ तेज़ रफ़्तारी ते कंट्रोल रखिजे। ऐं इहो ज़रूरी नाहे त अव्हीं तेज़ पहुचो, तकड़ा पहुचो, ज़रूरी ही आहे त अव्हीं भले कुझु घड़ियूं देर पहुचो पर सही ऐं सलामत पहुचो। ऐं अव्हां जे हथनि में केतिरनि ई इंसाननि जूं जानियूं हूंदियूं आहिनि जेके अव्हां जे ज़िमे हूंदियूं आहिनि ऐं जेके वरी केतिरनि ई फर्दनि जा सहारा बि हूंदा आहिनि। उन करे तेज़ रफ़्तारी मुज़ाहिरो न कयो ऐं कंहिंजा सहारा खसण जी कोशिश न कयो, छो जो तव्हां सोणा सेबता आहियो, तव्हां सोणा आहियो, तव्हां गुलाब जा गुल आहियो। ईअं न कयो, तेज़ रफ़्तारी न कयो ऐं जेको आहे वन व्हीलिंग न कयो।

हाजी हा समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां सुन जा नाला अवां गुलाब जा गुल आयो अवां प्रोग्राम जा सिंगार आयो तवां जा नाला खणंदासीं हिन तवां जेके बकरा खरीद कया आहिनि तवां जेके ढोर ढगा खरीद कया आहिनि उसाईअ लाइ तवां बूट कपिड़ा ख़रीद कया आहिनि जिन न कया आहिनि त मुंहिंजो अवां सभिनी खे हिकड़ी गुज़ारिश आहे अवां खे त पंहिंजी ख़रीदारी खां अॻु में पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखो उन ग़रीबनि जो उन मिसकिननि जो उन यतीमनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखो जिन कपिड़ा न वरिता आहिनि जिन बूट न वरिता आहिनि ऐं उन ॾींहुं यानी ईद वारे ॾींहुं ओज़ा वारे ॾींहुं उन सभिनी मिसकिननि जो ख़्यालु ज़रूरु रखिजो ऐं पाड़े वारनि खे पंहिंजे दोस्तनि खे पंहिंजे मिटनि माइटनि खे न विसारिजो उन गोश्त खां उन पतीअ खां उन हिसे खां जेको हुन जो हिसो ठहे थो ऐं सभिनी बसि मां वधीक तव्हांखे नथो चवां ऐं तव्हांजा नाला खणा थो असांजा दोस्त आहिनि मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी सुमार सोलंगी ऐं अरबाब कुंभार ऐं डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो डॉक्टर ज़मीर मीराणी तारिक मीराणी नौदरो चौक लाड़काणे खां इरशाद कुराई बैतल माल कॉलोनी लाड़काणे खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली झंडी मरे खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया झंडो मरी खां ऐं इमाम रिनो बमरो नारो सालिह पट खां मसूद जमाली बचल शामियाणी सखर खां ऐं उन सां गॾु आहिनि मोहम्मद अहसन गुल हसन ऐं बाबल ख़ान मीराणी जमाली ऐं नूर हुसैन तुनियो बदीन खां प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ जी महिरबानी अत्ता मोहम्मद मीराणी रोहिड़ी खां प्रोग्राम ॿुधे पियो लख कुर्ब भाउ जा इमाम रिनो बमरो ॻोठ नबीदाद बमरो नारे खां ऐं रांझन कोरी कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां ऐं उन सां गॾु आहिनि अली जूणे जो ऐं वॾेरो ख़ान मोहम्मद जूणे जो मसूद जमाली बचल शामियाणी सखर खां ऐं उन सां गॾु आहिनि मोहम्मद अहसन गुल हसन ऐं बाबल ख़ान मीराणी जमाली ऐं नूर हुसैन तुनियो बदीन खां प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ जी महिरबानी अत्ता मोहम्मद मीराणी रोहिड़ी खां प्रोग्राम ॿुधे पियो लख कुर्ब भाउ जा इमाम रिनो बमरो ॻोठ नबीदाद बमरो नारे खां ऐं रांझन कोरी कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां ऐं उन सां गॾु आहिनि अली जूणे जो ऐं वॾेरो ख़ान मोहम्मद जूणे जो सैद इनद अली शाह बुखारी पनियाकल खां ऐं हाफ़िज़ लखमीर ढिलो मोरे खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं असां वरी अवां दोस्तनि लाइ मास्टर मंज़ूर जो कलाम आहे सिंगार जा समूरा हथियार यार तो वटि गॾिजी ॿुधूं पिया ऐं जा कयूं पिया उमीद त अव्हां खे ज़रूरु पसंदि ईंदो।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

अजी असां प्रोग्राम रोशन सुबह में असांजा दोस्त शामिल थियण लाइ फोन कई मंजूर जलबाणी मोहसिन अहसन जलबाणी ऐं नंढड़ी पोपरी ॻोठु गाज़ी ख़ान जलबाणी तालके वार या तालको नसीराबाद वञो ॻोठु हूंदो दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं सिम जा अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त पूरे मुल्क में पूरे सिंध में असांजे नंढनि वॾनि शहरनि में ॻोठनि में हिन वक़्तु जेको पोलियो मुहिम हले पई उन जो असांखे ज़रूर साथ ॾियणो आहे जेका बि पोलियो टीम असां वटि अचे पई असांजे ॻोठनि में अचे पई असांजे दर दर ते अचे पई असांजे घर ॾे अचे पई नंढड़नि ॿारनि खे पोलियो जे मूज़ी मर्ज़ खां बचाइण लाइ जेके पोलियो जा फुड़ा पीआरिया वञनि पिया उन्हनि जो तव्हांखे असांखे साथ ॾियणो आहे छो त पूरी दुनिया मां पोलियो जो मर्ज़ जेको आहे ख़तम थी चुको आहे पर किथे किथे असांजे मुल्क प्यारे मिठड़े मुल्क पाकिस्तान में किथे किथे अञा इहे मर्ज़ थोरो ज़ाहिर थी पए पियो उन लाइ इलाज आहे इलाज सुनत आहे इलाज कराइणो आहे ऐं असांखे उन टीम जो असांखे साथ ज़रूर ॾियणो आहे ऐं पंहिंजे उन्हनि पंजनि सालनि जे अंदरि जेके असांजा नंढा ॿार आहिनि असांजा प्यार आहिनि असांजा गुलाब जा गुल आहिनि उनखे असांखे पोलियो जा फुड़ा ज़रूर पीआरणा आहिनि उन जो साथ ज़रूर आहे।

0: हा जी समय ने कुछ दोस्त नाला रहिजी विया उहे असां अवां ताईं पहुचाईंदा हलूं असांजो बरकत अली जमाली बलोच आहे पंहिंजे जाफ़राबाद बलोच खां दोस्तनि वॾी महिरबानी त समय इन ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे पियो पंहिंजी पुॼाणी ते इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान नेमत अला जुणे जो खे अलाह निगाहबान
1: अब आप सुनेंगे
2: असां सिर्फ़ एतिरो चाहियूं था ईरान वटि एटमी हथियार न हुजणु घुर्जनि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प नेवी सुठो कम करे रही आहे को बि जहाज़ ईरान ताईं न पियो बि अची सघे नाकाबंदी वसीले आबनाए हुर्मुज़ जो मुकमल कंट्रोल अमरीकी नेवी वटि आहे आबनाए हुर्मुज़ मां जहाज़नि खां टूल टैक्स वठण वारो मुतालबो सफ़ारती मुआदे खे नाक़ाबिले अमल बणाए छॾींदो ईरान एटमी मामलनि ते अमरीका सां ॻाल्हाइण वारनि ख़बरुनि खे सख़्ती सां रद्द करे छॾियो आहे ईरान जे परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त रिचार्ज थियल यूरेनियम अमरीका हवाले न पियो कयो वञे ॻाल्हियूं सिर्फ़ लिबनान समेत ॿिया जंगी मुआज़ ख़तम करण बाबति हली रहियूं आहिनि एटमी मामलनि ते हलंदड़ अफ़वाहुनि जो हक़ीक़त सां को बि वास्तो न आहे पाकिस्तान जो वफ़द ॻाल्हियुनि लाइ अॼु ईरान वेंदो पाकिस्तानी अख़्तियारनि जो ईरान वञण सां ॻाल्हियुनि जे बहितर नतीजनि जी उमीद आहे अमरीकी परदेही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि जा मुस्बत इशारा मिली रहिया आहिनि ॻाल्हियूं मुस्बत अंदाज़ में हलंदड़ आहिनि असांजा इतिहादी हुन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे ॾिसजे त ईरान सां मुआदो थिए थो या न ईरान सां मुआदो न थियो त वधीक फ़ैसिले जो अख़्तियार सदर ट्रम्प वटि आहे वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तहरान में ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ची सां मुलाक़ात खिते जी सूरत हाल समेत सालसी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं ईरानी मीडिया मूजिबि मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास इराक़ची विच में जंग जे ख़ात्मे बाद तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही ॿियो दौरो आहे पाक चीन सफ़ारती लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण ते इस्लामाबाद में तकरीब सदर आसिफ अली ज़रदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परडेही पॉलिसी जो बुनियादी थंब आहे तरक़ी जो रस्तो पाकिस्तान ऐं चीन जो गॾियल ख़्वाब आहे ॿिन्ही मुल्कनि हमेशा हिक ॿिए जे बुनियादी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कयो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त खिते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में पाकिस्तान मर्कज़ी किरदार अदा करे रहियो आहे चीन बि पाकिस्तान जे सालसी वारे जी कोशिशुनि जी हिमायत कई आहे गॾियल कोशिशुनि सां तरक़ी जा रस्ता तय कंदासीं पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठो रहियो वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती वधीक मज़बूत थी सीपेक पाकिस्तान जी मईशत ऐं रोज़गार जी फराहमी लाइ अहम आहे मुल्क में जटादार अमुन जे क़याम लाइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी वतन जो अमुन अमान शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी क़ुर्बानी जो नतीजो आहे शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे फील्ड मार्शल सद आसमी जो जी एचक्यू में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे एज़ाज़ ॾियण वारी तकरीब जो ख़िताब एसपीआर मूजिबि फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि ऐं गाज़ियुनि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो फील्ड मार्शल चयो त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख़ुरु आहिनि शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तान लाइ मुक़दस अमानत आहे फील्ड मार्शल पारां कानून लागू कंदड़ इदारनि जे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वेड़ में लगातार कार्रवाई ते वाखाण बि कई ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 48 कलाकनि दौरान वधीक 30 दहशतगर्दनि खे मारे वियो सिक्योरिटी फोर्सेस दताखेल स्पेन वाम ऐं बनू समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ताईं ऑपरेशन जो दायरो वधाए छॾियो सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि कार्रवाई दौरान दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां हथियार गोला बारूद धमाकेदार मवाद ऐं तयार थियल IED पिण बरामद कई वियूं सेनेटाइज़ेशन ऑपरेशन दौरान ज़मीन खां सिरंगुनि ऐं बैंकरनि जो हिकु पेचीदा नेटवर्क ॻोल्हे हुन खे तबाह कयो वियो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जा समूरा गिरफ़्तार मेंबर इसराइली क़ैद मां आज़ाद थी विया इसराइल खां तुर्किया मुंतकिल पाकिस्तान गज़ा वासनि लाइ खाध खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक के कारकुनान इसराइल की बदसलूकी वाले वाकई की मजम्मत कई है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटे के रोकना या कारकुनान से बदसलूकी आलमी कानून खिलाफ है। स्पेन ए इटली पारा भी इसराइली कदम की मजम्मत। स्पेन के वजीर आजम चो तो फ्लोटेला के कारकुन के तजहीक कबूल जोगी ना है। सुन कमिना कराची के बीआरटी मनसूबे लाट टू जो कम तेज करने की मंजूरी दी छी। कम में देर से अगुणो ठीको रद्द। एफडब्ल्यूओ के कम देने की मंजूरी डिनी वही। वे वीचे यूनिवर्सिटी रोड जो कम 90 दिन अंदर मुकम्मल करने की हिदायत।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सामीन नाजरीन, मैं उनसे मुखातब हूँ। अकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
9: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0

0: 3125 7 8 6।
1: जी हाँ, बुड़ी 381 5 5 7 86।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

तिखा घुर्ज मूंखे चुभनि था अंदर में, तिखा घुर्ज मूंखे चुभनि था अंदर में, मगर मूंखे प्यारा लॻनि था अंदर में। ही मुर्कूं ही महमीज़ूं ऐं चालूं सॾण जूं, ही मुर्कूं ही महमीज़ूं ही चालूं सॾण जूं, ही अच वञ संभालूं ऐं घूरूं सॾण जूं, उहे प्यार मुंहिंजे विझनि था अंदर में, तिखा घुर्ज मूंखे चुभनि था अंदर में। जवानी आहे तुंहिंजी को रब जो ख़ज़ानो, जवानी आहे तुंहिंजी को रब जो ख़ज़ानो, मिलण जो थो महजूर ठाहे बहानो, वसल जा बहाना ठहनि था अंदर में, तिखा घुर्ज मूंखे चुभनि था अंदर में, मगर मूंखे प्यारा लॻनि था अंदर में। तव्हां ॿुधो था GFM नेटवर्क प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती, साण करे मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण। प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं GFM नेटवर्क तां ऑनियर कयो वेंदो आहे, जंहिं में हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजेस ऐं उन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी। त मुंहिंजा सॼणो कहिड़ा हाल अथव? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? ख़ुश ख़ाश वेठा आहियो? ईद जूं तयारियूं अवां जूं कीअं हली रहियूं आहिनि? कुर्बानीअ जी ईद आहे ऐं वॾी ईद आहे ऐं तमामु ख़ुशियुनि वारी ईद आहे।

जी हाँ मुझे मिठा तीन कुर्बानी की ईद है और तमाम वही ईद है खुशियन वाली ईद है। अल्लाह ताला तमाम सभी के कुर्बानी करण की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम सभी के कुर्बानी वाली ईद जो खुशियों तमाम असाजे इन प्रोग्राम में शामिल थी सोता बजरिया एसएमएस। एसएमएस करने तरीकेकार सहलो आसान पे मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एमआरओ लिखो स्पेस दियो स्पेस का लिखो पाँचों नालो पाँच गोठ शहर जो नालो लिखी कर मोकलो असान 9888 1। तो मुझा मिठा सही कुर्बान इस्लाम जो अहम इबादतों में एक अजीम इबादत है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेमिसाल फरमा बरदारी के याद में अदा कई वी है। अल्लाह पाक जडे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांजे प्यारे पुट के कुर्बान करने जो हुक्म दिनो हो तो उन बिना कें हबक के अल्लाह के हुक्म जो आडो सिर झुकायो अल्लाह पाक संदस इखलास फरमा बरदारी दिसी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जेको दुंबो जैके चइबो आहे दुंबो मोकिलियो उन्हें याद के ताज़ो करण जे लाइ मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा ते कुर्बानी पिण कंदा आहिनि। कुर्बानी जो असल मक़सद सिर्फ़ जानवर ज़ुबह करणु अथव मुंहिंजा साईं, पर अलाह पाक जी रज़ा हासिल करणु पंहिंजी ख़्वाहिश खे क़ाबू करणु ऐं इख़लास पैदा करणु आहे। कुर्बानी इंसान खे इज़हार हमदर्दी ऐं भाईपीअ जो दर्स ॾिए थी। कुर्बानी जो गोश्त ग़रीबनि मिसकिननि ऐं ज़रूरतमंदनि में विरिहायो वेंदो आहे जंहिंसां मोहबत ऐं बराबरीअ जो पिण अहसासु थींदो अथव। इस्लामी कुर्बानी हर साहिब हैसियत मुस्लमान ते वाजिबु आहे। कुर्बानीअ जे लाइ सिहतमंद ऐं बेऐब जानवर चूंडियो वेंदो आहे जीअं इबादत जो मयारु बहितर रहे। कुर्बानी वक़्तु सफ़ाई एहतियात ऐं इस्लामी उसूलनि जो पिण ख़्याल रखियो वेंदो आहे। अॼु जे दौर में कुर्बानी असांखे उहो सबक ॾिए थी त असां इंसान पंहिंजे ज़ाती मुफ़ादनि खां मथे थी इंसानियत जी ख़िदमत करे करियूं। जेकॾहिं असां कुर्बानी जे असल रूह खे सम्झी अमल कयूं न त समाज में मोहबत इतिहाद ऐं भाईचारो पैदा थी सघे थो।

अलाए जे छामी राज़ी आ, अलाए जे के सा राज़ी आ। जी हाँ, बिल्कुल उन जी मर्ज़ी आहे। असां जी इबादतूं, असां जी नियाज़तूं, निबड़तूं जेके बि आहिनि, उन्हनि खे ॾिसण वारो आहे। दुनिया जो हर उहो इंसान आहे, उहो अमल जेको करे थो, उन सभिनी जी ख़बर मुंहिंजे रब करीम खे आहे। अलाह ताला जे दर दुआ आहे त अलाह ताला असांखे तौफ़ीक अता फ़रमाए ऐं असांखे हिकु सुठो ऐं बहितर इंसान बणाए। त दोस्तों जा मैसेज बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं गॾो गॾु, ऐं उन सां अॻु में तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलंदासीं। तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में मैसेज जे ज़रिए शामिल थी सघो था। ऐं मैसेज खे हिन तरीक़ेकार सवलो अथव, आसान अथव। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, ऐं स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां खां 888-1 ते। छा ते मोकिलींदा? 888-1 ते। त वकील मुर्तज़ा मुगेरी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो कंबर खां ई चवनि था, अदा प्लीज़ असांखे फ़ाइज़ा अलीअ जे आवाज़ में कलाम ॿुधायो। हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। इंतज़ार कजो, अञा प्रोग्राम जो आगाज़ थियो आहे। मुंहिंजा पहिरीं दादू खानदास जतोई, अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई ऐं फ़क़ीर इनायत उल्ला जतोई पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया। महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान वांजा। तमामद मीरानी रोहिड़ीअ खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे थो, ऐं ग़ुलाम हुसैन संदीरो जी आवाज़ जी अदा जन फ़रमाइश कई आहे। प्यारा हाज़िर, तव्हांखे स्पेशली प्रोग्राम में भलीकार चवां थो, ऐं तव्हां जे लाइ इहो बि चवंदुसि त तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो कलाम ज़रूरु ॿुधाइबो। ॻोठ नबीदाद बमरो नारे खां इमाम लीनू बमरो पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, चए थो प्रोग्राम लाजवाब आहे। अदा गुलाब, अदा महिरबानी भाउ मुंहिंजा, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो था। अदा नबीदाद बमरो जो ॻोठु तव्हांजो आहे, इमाम ॾिनू बमरो, अच्छा अदा इमाम ॾिना, अलाह ताईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां विरंदो, मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, उनजे लाइ स्पेशली मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे खोड़ दफ़ा भलीकार चवां थो। मौला तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अहिड़े ई तरीक़े सां तव्हां जॾहिं असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा आहियो त तमामु घणी असांखे ख़ुशी थींदी आहे। ॻोठु अली मोहम्मद उमराणी लाड़काणे खां वहीद अली उमराणी पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, चए थो अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम, अदा वहीद कहिड़ा हाल अथई? अबा ठीकु आहे, तबियत सही अथई। चए थो उन सां गॾु आहे निसार हाकिम अली ऐं निंढड़ो सईद अली ऐं ग़ुलाम रसूल उमराणी ऐं मुनवर मोले जे कला

मुझे फरमाइश कई अथन हाज़िर प्यारा मुनवर मुलाई भी तक बुधाईंदी नंढड़े की मुझे तरफ का खोड़ सारा प्यार रिजो बकाया जी तुम दोस्त उनके भी मुझे तरफ का खोड़ सारा सलाम छेजो मेहरबानी प्यारा तुम प्रोग्राम में शामिल थे आयो अच्छा प्लेलिस्ट में सॉन्ग है अहमद मुगल की आवाज़ में ढो सुो सॉन्ग है मुझे पसंद जो है छो तो उनके गजी इंजॉय कर।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252578।
5: जी हाँ बुड़ी 3315257786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ में भलीकार प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण त दोस्तो तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़रिए SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो MRO लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां हां 888 ते त दोस्तनि जा कुझु मैसेज हिन वक़्तु मुंहिंजे पैनल ते मौजूदु आहिनि त उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं असांजो प्यारो भाउ आहे दादू मोरो पुल खां हुसैन मल्ला ऐं मज़हर अली मल्ला ऐं चवनि था प्रोग्राम तमामु सुठो आहे अदा गुलाब खान ऐं कैसे हो अदा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां ऐं अदा जन अस्सलाम वालेकुम बि चयो आहे आली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला आली मदद भाउ मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो ठीकु आहियो तबियत सही आहे तव्हांजी ऐं अदा सां गॾु आहे मज़हर अली मल्ला ऐं अदा जन चवनि था त असांखे शाहिद अली बबर जे आवाज़ में कलाम ॿुधायो सुख सारा हली आहे त लिखी ॾेई अड़े अबा केरु थो पंहिंजा सुख लिखी ॾे सुख बचा किथे आहिनि ज़िंदगी में हिन वक़्तु माण्हुनि वटि उहे बि तव्हां ईअं लिखी ॾेई छॾियो हाणे तव्हांजी फराक दिली तमामु वॾी आहे ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे अलाह ताला तव्हांजे सुखनि में तमामु घणो इज़ाफ़ो करे ऐं असांजे अख़्तियार में कॾहिं बि कोन हूंदो अथव पंहिंजा सुख कंहिंखे ॾियूं पंहिंजी ख़ुशियूं कंहिंखे ॾेई छॾियूं या असां अक्सर करे अदा ईअं चवंदा आहियूं न अदा हुसैन त अलाह तोखे मुंहिंजी हयातीअ जा ॾींहं बि ॾिए छा तव्हांखे लॻे थो त ईअं हूंदो आहे ईअं न आहे हूंदो जेका हयाती इंसान जी लिखियल हूंदी आहे न ओतिरी ई मिलंदी आहे इन खां न मिली सेकंड सेकंड बि अञा वॾो आहे मिली सेकंड वधी सघे थी न घटि थी सघे थी अगरि मां चाहियां जेकर ईअं हुजे हा त मां पंहिंजी ज़िंदगी मां पंहिंजी ज़ाती तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां अगरि मां ईअं चाहियां ऐं ईअं पॉसिबल हुजे हा मां पंहिंजी ज़िंदगीअ जो अधु हिसो मतिलबु जवानीअ जो पंहिंजे वालिद खे ॾियां मुंहिंजो बाबा अॼु ज़िंदा हुजे हा मूं सां गॾु ऐं मियां बि आहे उहा हू पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसे हिनखे जो अधु हिसो हिनखे ॾेई छॾियां त इहे शायदि अली बाबा प्लेलिस्ट में मुंहिंजो सॉन्ग आहे उहो तव्हांखे अॼु मां ॿुधाईंदुसि प्रोग्राम कमरदीन चांडियो खां शमसुद्दीन सोलंगी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो अदा शमसुद्दीन तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो चयो था आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है पहली बार शामिल हो रहा हूं अदा पहिरियों दफ़ो तव्हां शामिल थिया आहियो त तव्हांखे स्पेशली मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो ख़ुशामदीद चवां थो वेलकम चवां थो महिरबानी प्यारा अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो रऊफ़ मक़सीअ जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं रऊफ़ मक़सीअ जो कलाम बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त अहिड़े ई तरीक़े सां असांजे प्रोग्राम ई तव्हां शामिल थी सघो था बज़ारी आहे SMS करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे आसान आहे पंहिंजी मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो MRO लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो 888 ते ही गानो गुलाब जो गुल तूं आहीं मिठा मुंहिंजी दिलि तूं आहीं रऊफ़ मक़सीअ जो ख़ूबसूरत आवाज़ ज़बरदस्त बोल ऐं ज़बरदस्त शायरी स्पेशली मां डेडिकेट कयां थो पंहिंजे समूरनि लिसनर्स खे मुंहिंजे तरफ़ खां ही तव्हांजे लाइ तोहफ़ो आहे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252586।
4: जी हां 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

Short commercial break haben wir gedacht, wir haben uns mit den Mitteln, Pären, Waren, Veneron, K, Program, Music, Musti, Mibaligar, Mujer, Mitteln, Musti, Program, Music, Musti, Jarewege, Kamati, Hikawagi, Harjumajiri, Onir, Kevin, Pure Network, Jamie, Sakaduna, Sakara, Paramano, Larkanavara, Paramano, Morevara, Mitamano, Mirpur, Haswara, Mitamano, Merapura, Mitamano, Matiariavara, Sakrand Vara, I Matriavara, Mitamano, the Matriavara, and the message be Jajan, Sakara, we like the Guman, Aba, Ayo Jera. ऐ इधर जे मसरूफियातुन में आयो छा तमाम घणा बिजी लगा पिया ऐ मेहरबानी आहे सभिनी दोस्तनि कुछ दोस्तनि मैसेजेस आहिन उहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं चए थो आदाब गुलाब खान कॾहिं दादू मोरो पुल ते तव्हां अचो असांजे तरफ़ खां दावत अथव अचो त तव्हां खे सिंधू दरिया जी फ्रेश मच्छी खारायां वाह साईं वाह आदाब मोहम्मद हुसैन यकीन कयो जेका मच्छी आहे न मुझी तमाम घणी पसंदीदा आहे ख़ासि तौर ते तलाह वारी न दरिया वारी मच्छी असां वटि ईंदा आहिनि तव्हांजे ॻोठ जा कुझु मच्छी खणी मच्छी फरोश ईंदा आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजो चयल हूंदो आहे बाबा महिरबानी कयो ओरिजिनल मच्छी ऐं साबी वॾी ॿ अढाई किलो जेतिरी हुजे न उहा मूंखे ज़रूरु ॾींदा कयो वॾे शौक़ सां खाईंदो आहियां इनशाला अदा हयाती रही त ज़रूरु ईंदासीं ऐं दादू मोरो पुल ऐं मुंहिंजी ऑफिस FM 88 तमामु घणो को परे न आहे 4-5 किलोमीटर जो ई पंधु आहे दादू रोड ते ई आहे ऐं बल्कि दादू बाईपास ते ई असांजी ऑफिस आहे ऐं तव्हां समेत जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उहे अगरि असांजी FM रेडियो ते अचणु चाहिनि था मिलणु चाहिनि था विज़िट करणु चाहिनि था त मोस्ट वेलकम असांखे तमामु घणी दिली ख़ुशी थींदी ऐं अदा मोहम्मद हुसैन तव्हांजी दावत मूंखे क़बूल आहे इनशाला ताला हयाती रही त मुलाक़ात ज़रूरु थींदी बाक़ी दादू मोरो पुल तां असांजो हर 5 ॾींहं 8 ॾींहं 10 ॾींहं क्रास थींदो रहंदो आहे पुराणे कार में आयासीं वियासीं हलिया ऐं न को मां तव्हांखे सुञाणियां थो न मूं वटि तव्हांजो नंबर आहे न मां तव्हां मूंखे सुञाणियो था थी सघे थो पाड़ेसरी आहियूं हिक ॿिए खे ॾिठो बि हुजे पर सुञाणियूं त कोन था दादा गुलाब कहिड़ो आहे या दा हुसैन कहिड़ो आहे महिरबानी दादा तव्हांजे खुलूस जूं खोड़ सारियूं मोहबतूं अलाह ताईं तव्हांखे ख़ुशि रखे मीरपुर ख़ासि खां फरीद महिर पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो

0: number. Express PM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: आम तकरारन ते बे बुंजो ना आयो मुख्तलिफ शहरन में औरत समेत छह जणा कतल एक जणे जो तशद थियल लाश थे बख्शापुर फरसा भंगवार बरादरी जी बिंदरन में छेड़ो औरत समेत टे जणा कतल गोठ सुखवान जाफरी में पुराने तकरार था थियल झेड़े में मेहार भंगवार गुलाम फरीद एक औरत मारजी वही साल अग बिन्हीं भेरन में चोरी के मामले का थियल झेड़े में एक जणो मारजी वयो पलांद में अज एक औरत समेत तीन जणन के कतल कयो वयो कश्मोर भरसा में कचे में कोश ए शरधुर में झेड़ो थियो बजना कतल एक जख्मी हाजी खान थाने के हद में पुराने तकरार था झेड़ो थियो गोली नगर सबब भूरो शहर ए नूर मोहम्मद कोश मारजी वया मारूफ शहर जख्मी थी पयो गंबर भरसा पर सईद भट्टी डंडा हणी कतल कयो वयो न्यू सईदाबाद भरसा नौजवान जो घर में तशद थियल लाश हथायो टिन जवाबदारन की गिरफ्तार कयो वयो गोठ शादा जमाली वासी अब्दुल लतीफ जमाली जो घर में तशद थियल लाश मिलियो पुलिस मूजिब नौजवान के तशद कर घुटा दई कतल कयो वयो है उम्मीद अली जमाली रांझण ए अलीगुल जमाली के गिरफ्तार कयो वयो है।

करे छॾियूं। घर वज़ीर मोहसिन नकवी जी 24 कलाकनि दौरान ईरानी वज़ीर वज़ीर अब्बास इलाकीअ सां तहरान में ॿी मुलाक़ात। तहरान ऐं वॉशिंगटन में इम्कानी माहिदे वारनि तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि अमेरिकी ऐं ईरानी तजवीज़ुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ज़रियल मूजिबि पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे थो। ईरान पाकिस्तान जी साज़िशीअ में अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तसदीक करे छॾी। अमेरिकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओं जवाब वॉशिंगटन खे मोकिले छॾियो। मुआदे जे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क तयार करण जूं कोशिशूं तेज़। ईरानी ख़बर इदारे मूजिबि तहरान ऐं वॉशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं मुआदे खे हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि। ईरानी अमलदार मूजिबि अमेरिका सां अञा ताईं मुआदो तय नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। परडे॒ही तर्जुमान पारां तसदीक। ताहिर हुसैन इंदिराबी चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चांग ऐं ॿियनि सां मुलाकातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विच ओभर में छिकताण जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान जा ॿ अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मामले ते आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आइन तहरीक जे तहफ़ुज़ ऐं पाकिस्तानी सनद ते महांगाई ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। नवाब शाह जेकाबाद सेवन और शरफ फेरोज ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया विया। कंबर में चयो आहे तरफ़ां वधंदड़ महांगाई ऐं हुकूमत जे आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। तलहार में जमात इस्लामी पारां महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो।

0: ऐं सख जे सालेबट में पहुत जी मेंहिं खुलियल गटर में किरी पई। शहरीन वॾी मुश्किल सां मेंहिं खे रसा ॿधी ज़ख़्मी हालत में ॿाहिरि कढियो। शहरीन मूजिबि सालेबट में खुलियल गटर आवाम जे लाइ अज़ाब बणियल आहिनि। ॿारनि ऐं जानवरनि जे किरण वारा वाकिया बि रोज़ जो मामूल थी विया आहिनि। शिकायतुनि बावजूद टाउन इंतिज़ामिया खुलियल गटर बंदि करण जे लाइ तयारु न आहे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सच नेटवर्क सिंध की आवाज
1: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
0: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

सलाम भाई साहब, कैसे हो? प्रोग्राम नाइस है। शाजिया शेख फ्रॉम पीरज गुड खान प्रोग्राम दे पी त वालेकुम सलाम अदी। मेहरबानी तमाम मुझे प्रोग्राम के पसंद के होया। अदी चवे थी भाई सिस्टर सुमेरा क्यों नहीं आती है शोमी सॉन्ग प्ले करो मास्टर मंजूर का। त भाजी सुमेरा पांजे जाती मसरूफिया सबब कुछ वक्त का वठी एफएम 88 सा जुड़ल ना है, पर इंशाल्लाह जरूर अची वी। भाजी सुमेरा बेस्ट आरजे है, न सिर्फ तवाज बल्कि समूरन लिसनर्स की तमाम बेहतरीन आरजे है, उनके खोड़ सारा फैंस हैं। मेहरबानी अदी तुम प्रोग्राम में शामिल थे। शमसुद्दीन गोपांग कंबर खां मैंने प्रोग्राम दे पे चवे तो अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मेहरबानी मिठा तुम प्रोग्राम के पसंद कर पाई। वालेकुम असलम, मुझी तरफ का तक भलीकार मुशर्रफ 78 मोरी खां राजा हमीर पंज प्रोग्राम बुधे पे किश्वर कुमार उनसा गड टेलर मास्टर अदा वरी भी ईद अची लाल पवन कुमार अदा जन सा गड़ा है नवाब लुंडा चवन था भाई सलाम कबूल कजो मसरूफ है जुमे के दिन है। जी हाँ बिल्कुल अदा जुमे जो ढी आए नमाज की तैयारी करनी होंगी है, थोड़ा सारी एक्टिविटी होंगे हैं जो जुमे जी मानू कह मेहरबानी मिठा तुम प्रोग्राम में शामिल थे। बांधी का आफ्ताब जमाली पंजे प्रोग्राम दे पे अदा आफ्ताब तक भलीकार चवं तो बांधी का पेरों मैसेज मुझे शो में आयो है। बांधी मोरो एतरो परे ना है पर बांधी का पेरों मैसेज आयो है, उनके लिए तक मैं स्पेशली प्रोग्राम में भलीकार चवं तो अदा जन चवन था त असा के सॉन्ग बुधायो मुमताज़ लाशारी के आवाज़ में। हाजिर मुझा मिठा तक मुमताज़ लाशारी के आवाज़ में जरूर सॉन्ग बुधाइंदे।

कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मूं सां वंडींदे। कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मूं सां वंडींदे। हरदम पियो थो राह निहारियां, हरदम पियो थो राह निहारियां, अण तणमी थो फेरियूं पायां। कॾहिं अची तूं आथत ॾींदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे। तोखे ॾिसण लाइ साह सिके पियो, तोखे ॾिसण जे लाइ साह सिके पियो, तोखे ॾिसण सां रूह ठरे थो। अखिड़ियूं मिलाए हिकु थी वेंदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मूं सां वंडींदे। फैज़ाले जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हां जूं सुंदर समातूं।

मुंहिंजा मिठा साईं, सिंध जो नौजवान नसल जी न इख़लाक़ी तरबियत आख़िर केरु कंदो? कंहिं बि क़ौम जो मुस्तक़बिल उन जे नौजवान नसल सां जुड़ियल हूंदो आहे। जेकॾहिं नौजवान जी न तरबियत सुठे नमूने थिए त उहे समाज तरक़ी अमुन ऐं शौर तरफ़ वधे थो, पर जेकॾहिं नौजवान इख़लाक़ी क़दरुनि खां परे थियनि त समाज में बे रावरी, तशद्दुद, बदउनवानी ऐं बेचैनी वधी वञे थी। अॼु जेका सिंध समेत सॼे मुल्क में उहो सवाल अहम बणिजी वियो अथव त आख़िर नौजवान नसल जी इख़लाक़ी तरबियत केरु कंदो? इख़लाक़ी तरबियत जी शुरूआति घर खां ई थींदी अथव। वालदेन पंहिंजे ॿार जी पहिरीं दर्सगाह हूंदा आहिनि। ॿार पंहिंजो जेको बि घर जो माहौल ॾिसंदो आहे न उहो ई संदसि शख़्सियत जो हिसो बणजंदो आहे। जेकॾहिं वालदेन पाण सचाई, एहतराम, सब्र, ईमानदारी इख़्तियार कनि त ॿार बि उहे ई ख़ूबियूं सिखंदो। पर जेकॾहिं घरनि में झेड़ा, कूड़ ऐं बेध्यानी वधी वञे न त ॿार जी शख़्सियत बि मुतासिर थिए थी, ऐं वरी उन खां पोइ अचे थो किरदारु स्कूल ऐं उस्ताद जो, जेकी नौजवान जी तरबियत में अहम किरदार अदा कनि था। तालीम रुगो किताबनि ताईं महदूद न हुजणु घुर्जे, पर शागिर्दनि खे इख़लाक़ी बर्दाश्त, इंसानी रवैया ऐं ज़िमेवारीअ जो दर्स मिलणु घुर्जे। पर बदकिस्मती त असां अॼुकल्ह तालीम जो मक़सदु सिर्फ़ नौकरी हासिल करणु ताईं महदूद बणिजी चुका आहियूं, जॾहिं त किरदार साज़ीअ खे बिल्कुलु नज़रअंदाज़ करे छॾियो आहे। समाज में जेकी ही असांजा मीडिया जा इदारा आहिनि उन्हनि जो बि तमामु घणो असर अथव। सोशल मीडिया नौजवान जी सोच बदिलाए रही आहे। जेकॾहिं मीडिया मुस्बत पैगाम, अमली प्रोग्राम ऐं सुठा मिसाल पेश करे न त नौजवान जी रहनुमाई थी सघे थी, पर फ़हाशी, नफ़रत ऐं बेमक़सद मवाद नौजवान खे ग़लति राह ते वठी वञे थो। तंहिं करे मीडिया ते बि ज़िमेवारी आहे थिए थी त उहा तामीराती किरदार अदा करे। उन खां अलावा मज़हबी आलम, अदीब, समाजी अॻवाण, उन्हनि जो बि फ़र्ज़ु आहे त हू नौजवान में इख़लाक़ी शौर पैदा कनि, इस्लाम, इंसानियत, एहतराम, सब्र ऐं सचाई जो दर्स ॾिए थो। पर जेकॾहिं नौजवाननि खे दीन जी सही तालीम मिले त हू केतिरनि ई बुराइनि खां बची सघनि था। असांखे रुगो नौजवान पढ़ियल लिखियल न पर बाइख़लाक, बाशऊर ऐं ज़िमेवार इंसान घुर्जे, छो त मज़बूत क़ौमुनि जी सुञाणप उन्हनि जे किरदार सां ई थींदी आहे, बल्कि डिगरनि सां न।

ज़ुल्फ़िकार मंगी मोहब्बत का सवाह इन दुनिया में बियो रखियो छा बिल्कुल इ आए ऐं उनखां अलावा रुसण जे हवाले सां तव्हांखे मां ॿुधायां इंसानी रिश्ता जेके आहिनि मोहब्बत इतमाद ऐं बर्दाश्त ते क़ाइमु हूंदा आहिनि जिथे प्यार हूंदो आहे न हुते कॾहिं कॾहिं नाराज़गियूं बि पैदा थी पवंदियूं आहिनि पर जेकॾहिं रुसण रोल्स जो मामूल न बणिजी वञे त रिश्तनि जी ख़ूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता ख़तमु थियण लॻंदी आहे रोज़ रोज़ रुसण न रुगो दिलनि में फ़ासिला पैदा करे थो पर इंसान जे ज़हनी सुकून खे बि न तबाह करे छॾे थो के माण्हू नंढनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते नाराज़ थी वञनि था कॾहिं देर सां जवाबु ॾियनि था कॾहिं कंहिं ॻाल्हि खे नज़रअंदाज़ करण या मामूली इख़्तिलाफ़ बि रुसण जो सबबु बणिजी वेंदा अथव ऐं शुरूअ में उहो अमल शायदि मोहबत जी अलामत लॻे पर जॾहिं उहा आदत बणिजी वञे न त पोइ साम्हूं वारो माण्हू थकिजी पवे थो हर वक़्तु कंहिंखे परचाइण ऐं मनाइण सां आसान कमु न आहे हूंदो बहरहाल महबूब त मालिक आहिनि उन्हनि सां हिसाब छाजो त ज़िंदगी अॻे मसइलनि सां भरियल हूंदी आहे जेकॾहिं हिकु रिश्तो ज़िद शिकायत ऐं नाराज़गी में न फासी वञे त ख़ुशियूं ख़तमु थी वञनि थियूं ऐं रोज़ रोज़ रुसण जो हिकु नुक़सान उहो बि आहे त माण्हू आहिस्ता आहिस्ता अहमियत विञाइण लॻंदो आहे शुरूअ में माण्हू परचाइण जे लाइ हर कोशिश कंदो आहे पर जॾहिं नाराज़गियूं वधी वञनि थियूं त पोइ दिलि बेज़ार थी पवे थी ऐं उन करे मोहबत खे ज़िद ऐं अनाज बाहि में साहिड़े छॾे थी सॉन्ग आहे ॾाढो ज़बरदस्त अचो त इंजॉय कयूं

0: आखे हमल क्या मुल खरीद लंदाए।
1: बहादुर खान चवनि था या अली मदद मौला अली मदद मुंहिंजा अदा महिरबानी अदा फ़क़ीर राहिब तव्हां असांजे सभिनी प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहियो मुंहिंजे बि प्रोग्राम में शामिल थींदा आहियो उनजे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा लख अहसान इहे तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि। घोट शादी खान जिस्काणी लॻ मीरपुर ख़ासि खां गुलाब वाली जिस्काणी अदा नाले भाई अलाए हिकु ॾींहुं गुम थी वियो ऐं ॿ टे ॾींहं मां सम्झां पियो मुंहिंजो अलाए हिकु ॾींहुं हले वियो शायदि कोन थो प्रोग्राम ॿुधे। बरहाल अदा तव्हां वापसि आया आहियो चयो थो अस्सलाम वालेकुम त वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम ॿुधूं पिया महिरबानी मिठा तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं तमामु भलो आहे। हा साईं बिल्कुलु तव्हांजी पसंदि प्रोग्राम आहे न मुंहिंजा मिठा साईं फ़ाइदा फौज़िया सूमर जी आवाज़ जी अदा जन फरमाइश कई आहे सलाम सलाम चवनि पिया नज़ीर खोसो जेको बलोचिस्तान खां आहे उनखे महिरबानी अदा तव्हांजी तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। गुरबा मिठा खुश हुजो आबाद हुजो।

मुझे सुनो नवाबन जो नवाब आए ये बोल हन गाने जा बाबा त प्रोग्राम जो वक्त पहुंची है पानी पुजाणी थे वणण का मेरे हमेशा आंग ताके चंदासी पांजो घणे खा घणो ख्याल रखना कयो पांजे दोस्तन जो पांजे मिटर मेटर जो पांजे पाड़े वारन जो तमाम घणो ख्याल रखंदा कयो छो जो जिंदगी मुख्तसर है खबर ना है जिंदगी केतरी है। शमन अली मिराली जो वींदे सॉन्ग प्ले कया तो डाठो भलो सॉन्ग अथव उम्मीद तो सभी के पसंद इंदो इंशाल्लाह ताला मुझे तरफ का एडवांस ईद जो मुबारकू अवां के हुजन छो जो असान जो जो वरी प्रोग्राम नेक्स्ट थी वो ईद का बाद में थी त ईद के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह तवासा गड हुंदासे असन नेटवर्क की हमेशा कोशिश रही है त ईद जो खुशियों दुबाला थियन तवा जो असान जो साथ रहे इंतजार कजो ईद के प्रोग्राम में पा गड हुंदासी नेक्स्ट फ्राइडे अगर हयाती रही तो वरी सागे टाइम से तवासा गड हुंदासी तेस तई जे लाइ दींदा पांजे मेज़बान गुलाब खान भेण के इजाजत त अलह वाही अलह निगहबान शमन अली मीराले जो खूबसूरत सॉन्ग सजन लख कुर्ब करे आए तू पिरी पेर में।

अमन कायम करण में नाकाम, तकरारनि ते बि भुंजंदा आहियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत 7 ॼणा क़त्ल, 1 ॼणे जो तशद थियल लाश थे। बख्शाबुफर सां भंगवार बरादरी जी बिंदुनि में झेड़ो थियो, औरत समेत 3 ॼणा क़त्ल। गोठ सुखवान जाफरी में थियल झेड़े में मेहार भंगवार, गुलाम फरीद ऐं औरत आलिम उमर जी वई। पलांद में हिकु औरत समेत 3 ॼणनि खे क़त्ल कयो वियो। कश्मोर भरिसां बि कच्छे में कोश ऐं शरदुनि में झेड़ो थियो। बदनाम धारियल भूरो शहर ऐं नूर मोहम्मद कोश समेत 3 ॼणा मारिजी विया। ॿिन्ही धारियलनि जी सिर ते 50 लख रुपया इनाम बि रखियल हो। माजी महिलनि में मारूफ़ शहर बि शामिल। गंबर भरिसां में पर सईद भटीअ खे डंडा हणी क़त्ल कयो वियो। न्यू सैदाबाद भरिसां नौजवान अब्दुल लतीफ़ जमाली जो घर मां तशद थियल लाश ठाहियो। पुलिस 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मुंहिंजे वाके में मुलविज़ उमीद अली रांझण ऐं अलीगुल जमाली खे गिरफ़्तार कयो आहे।

अमेरिकी कांग्रेस में ईरान जंग बाबत सदर ट्रंप जा अख्तियार महदूद करण वाले ठहराव से वोटिंग मुलतवी। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की क्यादत के चवण से वोटिंग मुलतवी कई वही। अमेरिकी मीडिया मुजिब ठहराव से डेमोक्रेट्स जहा वोट्स मुकमल हुआ जै सबब रिपब्लिकन पार्टी वोटिंग मुलतवी कराई।

वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। परॾेही तर्जुमान पारां तस्दीक ताहिर हुसैन इंद्राबी चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जे विच भर में छिकताण जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान जा 2 अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसाद दार बि मामले ते आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। कराची में शाहराह भुट्टो जी तामीर मुकमल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शाम रोड जो बाज़ाबता इफ़्तिताह कंदो। वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त शाहराह भुट्टो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो आहे। शाहराह भुट्टो कराची जी मुआशी तरक़ी जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जी नई सुञाण बणबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिलि आहे। शहर जी तरक़ी असांजी तरजीह आहे। 39 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपयनि जी लाॻत सां मुकमल कयो वियो।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी ऐं मज़हबी जमात ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा, जेवीआई पारां महांगाई ऐं बदमनी ख़िलाफ़ सख़्त कम्ब, नवाब शाह मीरपुर माथेलो ऐं सांगण में एहतजाज कयो वियो। जमात इस्लामी जे सदे ते कोटड़ी, कंधकोट, तलहार ऐं जेकबाबाद में मुज़ाहिरा, नौशहरो फेरोज़, उमरकोट ऐं सेवण में एसयूपी एहतजाज कयो। मटियारी में क़ौमी अवामी तहरीक पारां महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज बजे दिल के तार।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अब जो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: أزكن الناس بي أعلى الحق
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 231 525 786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: GFM नेटवर्क पर
1: मेरे लिए कोशिशों तेज कर छो घर वजीर मोहसिन नकवी की 24 कलाक दौरान ईरानी परदेह वजीर अब्बास इराकी से तेहरान में भी मुलाकात तेहरान ए वाशिंगटन में इम्कानी माहदे वाले तजवीजों से गाल ईरानी न्यूज एजेंसी फारस मूजिब बिन्हीं अगवान अमेरिकी ए ईरानी तजवीजों से तफसीली गालबोल कई है दरियन मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफद अज तेहरान वनी सके तो ईरान पाकिस्तान की सासी में अमेरिका से गाल जारी रहने की तस्दीक कर छी अमेरिकी तजवीजों से तेहरान नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो माहदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज ईरानी खबर उदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गाल जारी हैं बई धुरू माहदे के हतमी शिकिल डेने लाए एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचा रही हैं ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा तई माहदो तय ना थो इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है आबद हरमूज से ईरान टोल लगाया तो तेहरान ए वॉशिंगटन में सफारती वायदो नी दुनिया में केर भी आबद हरमूज से टोल जक में ना इन कबूले नो सके अमेरिकी परदेह वजीर मार्को रूबियो तेहरान से गाल में कुछ मस्बत इशारा मिलिया पुरउमीद ना इंद कुछ डी में शूं वाजे थी वेंद अमेरिकी कांग्रेस में ईरान जंग बाबा सदर ट्रंप जा इख्तियार महदूद करण वाले ठहराव से वोटिंग मुलतवी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की क्यादत के चवण से वोटिंग मुलतवी कई वही अमेरिकी मीडिया मूजिब ठहराव से डेमोक्रेट्स का वोट मुकम्मल हुआ जै सबब रिपब्लिकन पार्टी वोटिंग मुलतवी कराई वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे से सुभाने बीजिंग रवानो थी पर तर्जमान पारा तस्दीक ताहिर हुसैन इंद्रावी चाहे तो वजीर आजम सुभाने का 26 मई तक चीन में मौजूद होंद सदर शी जिनपिंग वजीर आजम ली चियांग ए बेन से मुलाकातू कद पाकिस्तान जो विचोभर में छकतार के खात्मे के लिए कोशिशों जारी हैं घर वजीर मोहसिन नकवी तेहरान जब अहम दौरा कया नायब वजीर आजम इसहाक डार मामले के आलमी अगवान से राबते में आया

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har peher zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki aawaz.
4: जुमत उल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद, सजन से पान दरूद बुधन था। यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं, वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त।

0: अली अली।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क
1: बोल के आ है मुझे पाकिस्तान जो अहम वफद अज तेहरान वही सके ईरान पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका से गाल जारी रहने की तस्दीक कर छी अमेरिकी तजवीजों से तेहरान नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो माहे लाए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज ईरानी खबरों इदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गाल जारी हैं बई धुरू माहे के हतमी शिकिल देने एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचा रही ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा ताई माहदो तय रहे थो इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन के अहम दौरे से सुभाने बीजिंग रवानो थो पर तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिरा भी चयो है तो वज़ीर आज़म सुभाने का 26 मई ताईं चीन में मौजूद होंगे। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ए बेन से मुलाकात कद पाकिस्तान जो विचों भर में छकतान के खात्मे के लिए कोशिशों जारी हैं। घर वजीर मोहसिन नकवी तेहरान जहां बहम दौरा कया नायब वजीर आजम इसाक दार में आलमी अगवानों से राबते में है। फील्ड मार्शल के तेहरान के दौरे बाबत तस्दीक या तरदीद न कदस। सिंध असेंबली पाक चीन दोस्ती बाबत सहारा समेत मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी दे छी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड्स बिल, सिंध मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन काउंसिल बिल, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के रेगुलेशन वालों बिल ए सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरमीमी बिल मंजूर किया वह। सिंध असेंबली जिला अस्पताल एनआईसीएच रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल की मंजूरी भी डिनी। सीनियर वजीर शहजरीना मेमन चाहे तो पाक चीन दोस्ती समुद का उन्हीं हवाला का ऊंची ए माखी का मिठी है। पाकिस्तान ए चीन की दोस्ती के 75 साल मुकमल थे। कराची रस्ते बड़े पैमाने पर चीन से व्यापार थी रो है।

0: के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज,
7: GFM 90.4। लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न को

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: GFM Network.
1: पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में शाराह भुट्टो जो इफ्तिताह करे छो। बिलावल भुट्टो जरदारी शाराह फैसल ते पान गाड़ी हलाए रस्ते जो जायजो भी वरतो। कुछ देर में जलसे के भी खिताब कंदो। वड़े वजीर मुराद अली शाह चयो है शाराह भुट्टो शहीद बेनजीर जो मनसूबो हो जैंखे सिंध हुकूमत मुकम्मल कयो है। शाराह भुट्टो कराची की मुआशी तरक्की जदीद ट्रांसपोर्ट ए शहरी सहूलत की नई सुणप बणबो। कराची सिंध की जान ए पाकिस्तान की दिल है। शहर की तरक्की असांजी पहिरीं तरजीह आहे। पाकिस्तान अमेरिका ए ईरान विच में जारी छिकताण जी खात्मे लाइ कोशिशूं वधीक तेज करे छॾियूं। घरू वज़ीर मोहसन नकवी जी 24 कलाकनि दौरान ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकचीअ सां तहरान में बि अहम मुलाक़ात। तहरान ऐं वाशिंगटन में इम्कानी मुआहदे वारनि तजवीज़ुनि ते बि ॻाल्हियूं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स मूजिब ॿिन्ही अॻवाननि अमरीकी ऐं ईरानी तजवीज़ुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। ज़रियनि मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे थो। ईरान पाकिस्तान जी टियाखड़ीअ में अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तस्दीक करे छॾी। अमरीकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओं जवाब वाशिंगटन खे मोकिले छॾियो। मुआहिदे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क बि तयार करण जूं कोशिशूं तेज़। ईरानी खबरू इदारे मूजिब तहरान ऐं वाशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं मुआहिदे खे हतमी शिकिल ॾियण लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि। ईरानी अमलदार मूजिब अमरीका सां अञा ताईं मुआहिदो तय नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे। आबनाए हुरमस ते ईरान टोल लगायो त तहरान ऐं वाशिंगटन में सफारती मुआहिदो न थींदो। दुनिया में केर बि आबनाए हुरमस ते टोल जी हक में नाहे। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त तहरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु मुस्बत इशारा मिलिया आहिनि। वधीक पुरोमेद न आहियां। ईंदड़ कुझु ॾींहनि में शयूं वधीक वाज़े थी वेंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरा बि चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां अहम मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विचो ओभर में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वज़ीर मोहसन नकवी तहरान जा 2 अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बि आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। फील्ड मार्शल जी तहरान जे दौरे बाबति तस्दीक या तरदीद न कंदसि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: कहते हैं और मैं भी उनको ये कहता हूँ। इसके बाद जनाब फराज अली कहते हैं आई लव यू सर, थैंक यू सो मच फराज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फराज, फराज अली गांगरो। और जनाब इसके बाद नजीर खोसो हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, ये भी हमारे साथ हैं। और जनाब आगा जवाहर साहब कहते हैं आपने बकरा लिया, अरे जनाब मैंने बकरा भी नहीं लिया क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी सैलरी वैली स्टार्ट हुई 11 महीने हो गया, जनाब हम गरीब लोग कहां से बकरे लेंगे, हमने तो ईद के कपड़े तक नहीं लिए सर, अब रुलाएगा क्या, बस कर पगले। और जनाब आपके साथ मौजूद है, बकरा ईद का सीजन है और बकरा ईद का सीजन है तो जनाब मंडी वंडी सज गई है जनाब, कुछ ही दिन बकरा ईद में रह गए हैं और सभी लोग ताबड़तोड़ मंडियों का रुख कर रहे हैं, रोडों पे खड़े हुए बकरे लेकर, गाय लेकर, दुम्बे लेकर, और जनाब ईद की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं, बाजार भरे हुए हैं जनाब और लोग जो है ईद की तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी जो पाकिस्तान की रौनकें, पूरी दुनिया की रौनकें इसी तरह बरकरार रखे कि हम चाहते हैं जनाब ये रौनकें लगी रहे, ये रौनक मेले जो वो कम ना हो और लोग इसी तरीके से ना अपनी जिंदगी को बहुत इंजॉय करते रहे। नजीर खोसो हमारे साथ मौजूद हैं और सर आप ये बताइए आगा जब्बार साहब कि आपने बकरा बकरा लिया कि नहीं लिया और जनाब ईद की तैयारियां कहां तक पहुंची आपकी, सब लोग हमें बताएं। वजाहत अली हमें देख रहे हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे साथ रही इम्तियाज अली लशारी हमारे साथ हैं, वजाहत अली कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, मौला अली मदद या अली मदद और मौला अली मदद कैसे हैं सर जी, आई एम बिल्कुल फिट एंड फाइन। फकीर मोहम्मद यूनुस तो ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम सलाम जनाब। आज जाहिद शाह कहते हैं कैसे हो सर, आरजे भाई कैसे होता है एक आरजी, हमेशा जबरदस्त, हमेशा फुल ऑफ फन और हमेशा जिंदगी से भरपूर, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं जैसे आप हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो जनाब हमारे पास कॉलों की भरमार आना शुरू हो चुकी है, लोग बोलते हैं कॉल ही नहीं लेते, कॉल नहीं लेते, कॉल नहीं लेते। जनाब मैं चाहता हूं कि आपकी कॉल में भरपूर तरीके से लेता रहूं और जनाब इसी तरह से जो है आपकी साथ चलता रहूं और मैं चाहता हूं कि बस आप लोग हमेशा खुश रहें, चाहे आप कॉल के थ्रू लें रहें, आपकी कॉल अटेंड करूं, चाहे आपके मैसेज पढ़ के मैं पढ़ूं, तो आप खुश रहें। तो जनाब हमेशा खुश रहा करें क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, खुश रहने का नाम है, क्योंकि परेशान अगर हम होंगे तो इससे हमारी कल की जो मुश्किलें वो दूर थोड़ी ना हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पुरसकून रहें, खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। शफीक भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अब्बास मंगी साहब हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं कहीं बैठे हुए और जनाब जा रहे हैं, हमेशा खुश हैं। शफीक भट्टी कहते हैं फ्रॉम सऊदीया, क्या बात है, अब सऊदीया से है, तो जनाब सऊदीया वालों को हमारा ढेर सारा सलाम और जनाब अपनी जिंदगी की रौनकों को आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, जिंदगी को भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, तो हमारे साथ रहिए, इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। और जनाब जिस जिसके पास भी स्टार्स है ना, आजकल फेसबुक पे बड़े स्टार्स चल रहे हैं, तो जिस जिसके पास भी स्टार है तो मुझे देता रहे और जनाब इस जो मेरी फीड चल रही है इसको बहुत ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें जनाब कि मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो जाए। देखें जनाब अपने काम भी करवाते रहते हैं बंदा। तो जनाब क्यों ना लेते हैं शो की पहली पहली कॉल और देखते लाइन पे कौन है, ज्यादा देर नहीं करवाते आपको। अस्सलाम वालेकुम, हेलो
1: खालिक लाशारी गलायो।
0: अच्छा खालिक लाशारी साहब केड़ा हाल चाल है तां जा?
1: अलहमदुल्ला मुझे मिठड़ा बा तमा बुधायो।
0: अलहमदुल्ला मां भी फर्स्ट क्लास आया और इयो बुधायो खालिक लाशारी साहब त ईद जी तैयारियों की थी हलन तां जियो?
1: हां बिल्कुल वीआईपी नमूने सा बकरा बकरा खरीद के आ कपन जा जुरा जुतियों टोपियों माशाल्लाह जेड़ो हाल है मना भी जी वीआईपी तैयारी
0: जबरदस्त जबरदस्त या तां बकरो भी खरीद कर चुको आयो, कपड़ा भी लटा भी जूता भी पर कैसा ही बैठा हूं आ ताई दिसो ना हालत
1: साईं आवाज ला दे आदर बकरो वठी दियो जा।
0: वाओ घणे जो तां बकरो वतो आप?
1: साईं 25,000 में।
0: माशाल्लाह यार माशाल्लाह 25,000 में बकरा लिया खालिक लाशारी भाई ने, यार ये बहुत अच्छी बात है। तो घणे उनन में घणो गोश्त निकरंदो माना?
1: अरे ना गोश्त ॾिसो ना तोरो कोने अंदाज़े सां जेतिरो वज़न हूंदो, माशाल्लाह ठीक ठाक वज़न सुठो ई आहे।
0: गुड गुड गुड माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त खालिक लाशारी भाई, तव्हां त सफ़ा तेज़ निकिता हो, माना तमामु घणी तयारी तव्हां करे छॾी आहे, गुड या ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। अच्छा खालिक लाशारी भाई गानो कहिड़ो ॿुधंदो?
1: अरे गानो अॼु पंहिंजी असरदार जे आले पोटो आहे न हुन जी शायरी आहे, मीरपुर ख़ास जा मोर तोसां दिलड़ी लॻाई आहे।
0: मीरपुर ख़ास जा मोर अदा गुल तॾहिं मूंखे मीरपुर ख़ास जा मोर या तो
1: महिरबानी करे हलायो।
0: ओके ओके अली को मैंने कहा है वो ढूंढ के दे रहा है, वरना मेरे बस की बात नहीं है। और ये कहीं देना था करना चाहे
1: जी आदा अजीज जलवार है, अजीज सोलंकी है, कुर्बान अली खास के लिए है, गुलाम रतन मरी है।
0: ओके ओके थैंक यू खालिक भा, थैंक यू
1: मेहरबानी भा,
0: थैंक यू। खालिक लशारी भाई हमारे साथ थे और मैसेज के थ्रू हैं फकीर मोहम्मद यूनुस जो तो ये कहते हैं फना हो गई मोहब्बत, फना हो गई चाहत, फना हो गई इज्जत, महफिल तो है इस जमाने में मगर फना हो गई राहत, खूबसूरत फूल तो होते हैं मगर आजकल इसमें खुशबू नहीं होती तो फना हो गई राहत, हाय अफसोस जमाना। लगते हैं जनाब फकीर मोहम्मद यूनुस जतोई को जमाने ने बहुत सताया है और इसीलिए ये जो हैं आज जमाने की बात कर रहे हैं कि सब चीज फना हो गई, लेकिन जनाब सब कुछ फना नहीं होती। मैं गाना ही भूल गया यार, और वो था कश्मीर जैसे सोने दिल ललए इस तरह कुछ था, तो आप थोड़ा थोड़ा सर्च कर लो।

0: Alright guys, welcome back once again. एक बार फिर से आपका अपना अशफाक आपके साथ है. 5:37 time is right now. शाम के ढलते साए और आप लोग आज जुम्मे की छुट्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. अरे ना बच्चे, अच्छी बातों के साथ इंसान को हमेशा अच्छा सोचना भी चाहिए, अच्छा बोलना भी चाहिए. क्यों भला? अरे जनाब, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपकी पर्सनैलिटी के बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तभी आप लोगों के दिलों में घर करेंगे. और बदगुमानी और जो बदजुबानी होती है ना, दो ऐसे होते हैं इंसानों के अंदर जो हर कमाल को जवाल में बदल दिया करते हैं. इसीलिए जनाब, इस कमाल और जवाल से बचिए और बदगुमानी और बदजुबानी से परहेज कीजिए, क्योंकि जनाब ये इंसान की पर्सनैलिटी को घिरन लगा देते हैं. और जब इंसान की पर्सनैलिटी को घिरन लग जाता है तो फिर जनाब इंसान किसी काम का नहीं रहता. इसीलिए हम चाहते हैं जनाब कि आप उन तमाम नेगेटिव चीजों से, उन तमाम नेगेटिव वाइब से दूर रहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रहण लगा सकते हैं. हम चाहते हैं कि आप ऑलवेज शाइनिंग पर्सनैलिटी के साथ लोगों का वेलकम करें, लोगों की जिंदगी में एंट्री दें, ताकि आप लोग हमेशा सदाबहार बनकर जिएं और हमेशा लोगों के दिलों की धड़कन बनकर जिएं. आपका अपना अशफाक आपके साथ है जनाब. लेते हैं शो की एक और कॉल और जनाब अपने कॉलर को हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम. और नंबर है हमारा 03000113488. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम सर.
0: हाँ जी, केर असा सबनी सा गड.
1: हां, चेतन कुमार गला से हो साले बंदरे.
0: चेतन भाई, केड़ा हाल चाल? तब ठीक ठाक आयो?
1: जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक. तां बुधा ठीक है,
0: सफा फर्स्ट क्लास. चेतन भाई, यो बुधायो छा गंदा होता?
1: मैं आऊ स्कूल पढ़ने आया.
0: माशाल्लाह, केड़ी क्लास में?
1: पाए टेंथ में.
0: मैट्रिक में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त. तो तमाम जा हाने हाने मोकली ठण वारी वन. मोकलन में छा करण चाहियो था? छो त मोकलन के भी तो मानू यूटिलाइज करे ना. ये ना तो माना नानी जे घर वने, दादी जे घर वने, पर वरी भी थोड़ो घणी पढ़ाई जरूर करे, कोई कोर्स करे बैठे. तो तां जो छा रादो आप?
1: जी जी साईं, असां त घुमण कोन ईंदासीं साईं. कुझु धंधी वारे जो कमु हूंदो आहे उहो कंदासीं, कुझु टाइम पढ़ाई खे ॾींदासीं.
0: वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, इहा सुठी ॻाल्हि आहे. अच्छा, इहो ॿुधायो मुज़म्मिल, त मां गानो थो प्ले कयां सुफ़ैल सजराणी जो, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? वालेकुम अस्सलाम चेतन भाई, थैंक यू सो मच तव्हां असांखे कॉल कई
1: आहे.
0: हा बिल्कुल, हींअर त ॿुधायूं, हींअर त ॿुधायूं.
1: ऐं साईं, तव्हां प्रोग्राम हफ़्ते में हिकु दफ़ा कंदा आहियो, वधीक कुझु ॾींहुं वधायूं.
0: अच्छा, इनशाला इनशाला, ज़रूर ज़रूर. बसि ईअं मोकिलूं थियण वारियूं आहिनि त मां तव्हां सां इनशाला रोज़ प्रोग्राम करण जी कोशिश कंदुमि इनशाला.
1: साईं, ॻाल्हि ॿुधो.
0: जी जी,
1: तव्हांजो प्रोग्राम हर फ्राइडे ते ॿुधंदा आहियूं.
0: माशाला ज़बरदस्त आहे यार, तव्हां त मुंहिंजा प्यारा प्यारा लिस्टनर आहियो, दोस्त आहियो, तॾहिं तव्हां ॿुधंदा आहियो न?
1: जी जी बिल्कुल, जी स्कूल खां ईंदा आहियूं न.
0: जी जी,
1: पोइ रेडियो ट्यून कंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं, पोइ वरी शाम जो छोकिरनि खे ट्यूशन पढ़ाईंदो आहियां घर.
0: अच्छा
1: जी जी,
0: सही सही. माशाल्लाह, तव्हां इहा महिनत रखो, इनशाला ताला तव्हां हिकु ॾींहुं पंहिंजी मंज़िल ते पुॼंदव ऐं कामयाबियूं हासिल कंदव. थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू सो मच. इधर हमारे साथ चेतन भाई, और चेतन भाई के बाद हमारे साथ मैसेज पर हैं अब्दुल रजाक भाई. कहते हैं मोहम्मद खान कुम्भार, वफा जमाल कुम्भार, इजाज कुम्भार, हाली पोचो स्टॉप लग झलोरी, मीरपुर खास खान शो बुधो पाया, तमाम घणो मजो पियो अचे. चई था चवन था त न कपड़ा वताएं, न जूता वताएं, न कुछ वरतो आहे, छो त गरीब माण्हू आहियूं. त बिल्कुल जनाब, महंगाई एतिरी चोट चढ़ी वई आहे त या कपड़ा या लटा या जूता या माना सभु शयूं ख़रीदण असां जहिड़े ग़रीबनि जे बस में कोन्हे. पर जेतिरो बि थी सघे तव्हां पंहिंजी ईद खे एंजॉय कयो ऐं ख़ूब इंजॉय कयो. थैंक यू सो मच. माजिद अली मलिक कहते हैं यार, असांजी फरमाइश पूरी कोन कई. अबा मां हलायां थो गानो, थोरो सबर. थैंक यू सो मच माजिद अली मलिक साहब. आरिफ अमीन साहब हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. जाहिद समेजो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जाहिद समेजो इज हियर. ओके जनाब जाहिद समेजो भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं. और अब लेते हैं शो की एक और कॉल. 03000113488 हमारे नंबर है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम संचाला.
0: सर मजे में? बिल्कुल ठीक ठाक. तव्हां केर असां सभिनी सां गॾु? अमीर बख्श मंगनहार साहब, कहिड़ा हाल चाल
2: आहिनि?
0: अलहमदुल्ला. मूंखे लॻे थो तव्हां हिन वक़्तु रोड ते बीठा आहियो, छो त नवाब शाह था वञो, माना सफ़र में आयो?
2: सफ़र में मीरपुर खास वञो पिया, हिन जे करे मुंहिंजे भाउ सां ॻाल्हाए वठूं.
0: अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त यार, हैव अ सेफ जर्नी. अलाह ताला तव्हांजे सफ़र खे बख़ैरु आफ़ियत पंहिंजे अंजाम ते पहुचाए. इहो ॿुधायो छा करणु वञो था मीरपुर खास में?
2: बस घुमण फिरण वञूं था, वरी ईद में मटणो आहे। ॿियो ख़ैर आहे, ख़ुशि आहे?
0: ॿियो ठीकु ठाक, सफ़ा मज़े में। इहो ॿुधायो, हाणे किथे पहुता हो?
2: हाणे खनपुर ॿार में।
0: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इहो ॿुधायो, तोफ़ैल संजराणीअ जो गानो थो प्ले कयां, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
2: प्यारो दोस्त अलादाद मार, मोहम्मद अली मार, पठाण खान पटकेरो, अजला भंगार। ओके
0: ओके, मुंहिंजा प्यारा भाउ, ख़ैर सां पुॼो ऐं हमेशा ख़ुशि रहो। जी जनाब, हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई जो के नवाबशाह या खैरपुर मीरपुर जा रहे थे, तो जनाब बहुत से लोग सफर में हैं, तो हमारी यही दुआ कि अल्लाह ताला उनका सफर जो है बखैर आफियत गुजारे। लेते हैं शो की एक और कॉल। हमारे साथ हैं आरिफ अमीन साहब, कहते हैं जिंदाबाद अशफाक ब्रो, थैंक यू सो मच आरिफ साहब, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: वही जतोई असां सभिनी सां गॾु आहिनि, अगरि मां ग़लति न आहियां त।
3: साईं बिल्कुलु वफ़ा साईं।
0: वफ़ा साहब, कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा?
3: साईं शुक्र आहे, शुक्र आहे। शदीद गर्मी जी महिरबानी आहे।
0: हा वाकई वाकई,
3: तव्हांजो शो ॿुधूं था,
0: थधि पए थी हा में। वेरी गुड वेरी गुड। असां इहे चाहियूं था त जेका बि असांखे माण्हू ॿुधनि उन्हनि जी हा में थधिकार थी वञे असांखे ॿुधी करे।
3: जी जी साईं, मां तव्हांखे डिमांड कई त बाबा टे ॾींहं कयो, छंछर आचर न कयव?
0: यार असल में हिकदमि शयूं न थींदियूं आहिनि, कुझु प्री प्लानिंग हूंदी आहे, माना कुझु प्लानिंग हले थी, कुझु टाइमिंग ॾिसूं था, ॿियनि जा बि प्रोग्राम आहिनि, त पोइ
3: तव्हांखे उहो दौरु यादि हूंदो, हिकिड़ो 9 बजे प्रोग्राम कंदा या उहो टाइम रखो बिना कयो त महिरबानी।
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, त इनशाला असां शेड्यूल ठाहियूं था, जीअं शेड्यूल ठहियो त असां धड़ाम करके अची वेंदासीं।
3: कहिड़ो नगमो ॿुधाईंदव?
0: अॼु मेला नसीबन जा अॼु मेला
3: नसीबन जा। ॿियो ॿुधायो न सुठो, को जलाल चांडे जो।
0: जलाल चांडे जो, ओके जलाल चांडे जो ॿुधाईंदासीं ज़रूर, छो न।
3: जलाल चांडे इहो अथव नगमो।
0: हा हा, कहिड़ो?
3: तूं जे ॾिसंदी त केरु परचाईंदो, खुदा रुसे त खुदा खुदा कजे।
0: अच्छा, तूं ॾिसंदे केरु परचाईंदो?
3: केरु परचाईंदो? ऐं कुझु मां सां ॿाहिरि बि आहिनि।
0: जी जी जी,
3: मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर अमन जतोई, हिन वक़्तु ॿुधे वरितो, ज़हीर अमन जतोई ऐं जमील जतोई ऐं ज़ाहिद जतोई ऐं इरफान जतोई, हिन वक़्तु खोड़ सारा सलाम थो ॾे, ऐं कुराड़ो रसूल बश्क जतोई बि ॿुधे वरितो।
0: अच्छा,
3: ऐं रफ़ीक जतोई गोली मार मां ॿुधे वरितो, उनखे खोड़ सारा सलाम। बाक़ी जेके सिक ऐं आसिफ़ चाचड़, आसिफ़ चाचड़ लारकाने खां, बाक़ी जेके बि ॿुधनि था भाउ इशफ़ाक त वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई पारां, सॼे सत खे सलाम।
0: वालेकुम सलाम रफ़ीक भाउ, वहीद भाउ, वफ़ा वहीद भाउ, थैंक यू सो मच।
3: ओके ओके
0: ओके, हमारे साथ है जनाब वफा वहीद भाई, और जनाब वफा वहीद भाई के बाद अब टाइम हुआ चाहता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। हम चलते हैं एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जानिब, इसके बाद आप जो है माजिद अली मलिक साहब की फरमाइश पे गाना सुनेंगे। अदा नंबर कहड़ो है कॉल से गलाया हमारे? बिल्कुल जनाब, नंबर है 03-1111-3488-03-1111-3488। मूंखे नंबर यादि न थींदो आहे त लिखियल आहे, इन करे हर घर ईअं थो करणो पए। तो आप ये नंबर नोट डाउन करें, मुझसे बात करें, मैं आपका गाना भी चला रहा हूं। बस आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक आ गई है बीच में, तो हम लेते हैं कदर कमर्शियल ब्रेक, हमें छोड़ के कहीं मत जाएगा, सुनिए और सुनते रहिए जीएफएम एटीएट नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना, फातिह मेहरान, सिंध की एक और
5: आप सुन रहे हैं,
6: आप सुन रहे हैं
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है, और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं, पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
8: क्या देख रहे हो?
9: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते।

0: सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। जिथे मेला नसीब बन जा। बिल्कुल जनाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका अपना GFM88 नेटवर्क है और अशफाक नियाज़ी आपके साथ है। शाम के 7 बजे तक लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रता सा सबनी सा गड।
1: इशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। के रता सबनी सा गड।
1: साईं कतकोड़ो मा सूफी मा दली मलिक।
0: तकड़ो माची तकड़ो माची आयो असां वटि।
1: कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो?
0: ठीकु ठाक अलहमदिल्ला। तव्हां ॿुधायो, ख़ैर सां आयो? किथां कॉल कई आहे तव्हां? किथां, कहिड़े शहर मां?
1: कंदकोट मां।
0: कंदकोट पर सभु कीअं आहिनि?
1: सभु मस्तु।
0: सभु मस्तु? एॾा मस्तु बि न थियो
1: जीअं असां मस्तु हूंदा ॾिसंदा।
0: अच्छा, छा कंदा आहियो तव्हां? नालो ॿुधायो वरी ॿीहर मूंखे। माजिद अली मलिक साहब, तव्हां हाणे मूंखे तव्हांजी फरमाइश पूरी कई न मां फेसबुक ते?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, वॾी महिरबानी, लख कुर्ब।
0: न न, कोई मसलो न आहे। माजिद मलिक साहब, इहो ॿुधायो, कमकार तव्हांजा कीअं था हलनि?
1: सवा ज़बरदस्त साहिबु, अलाह जी महिरबानी सां।
0: अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इहो ॿुधायो, तव्हांखे असांजो शो कीअं पियो लॻे?
1: माशाल्लाह ज़बरदस्त। मुंहिंजी फरमाइश तव्हां पूरी कई आहे, सफ़ा ईअं सफ़ा मस्तु था छॾे।
0: भाउरनि जी दुआऊं, भाउरनि जी दुआऊं, भाउ भाउरनि जी फरमाइश रखनि ते।
1: अलाह कुझु कंदो, रब पाक आबाद कंदो।
0: अच्छा, बिल्कुलु बिल्कुलु। हाणे फौजिया सुबुह था हलायूं, छो त हिकु अधु फरमाइश करे थो बिल्कुलु ख़ासि खां। उहा कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? कहिड़ो डेडिकेट करणु चाहियो था?
1: मोहम्मद ख़ान मलिक।
0: मोहम्मद ख़ान मलिक ओनली?
1: ओनली।
0: क्या बात है यार, क्या बात है। इहो चाहियो
1: मुंहिंजो मामू
0: आहे। मामू, मामे खे बि डेडिकेट कयो था? वाह वाह वाह वाह,
1: प्यारो आहे मूंखे।
0: प्यार, वाह वाह, मामा त प्यारा हूंदा आहिनि न?
1: या मामू आहे, मामी कयो।
0: अच्छा, मामू वरी मामी खे प्यारो आहे? तव्हांखे मामो प्यारो आहे, वरी मामो वरी मामी खे प्यारो आहे, है न?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: वाह। इन्हनि
0: ॿिन्हिनि खे डेडिकेट था कयो। तव्हांजा मामा ऐं मामी हमेशह सुखी रहनि, ख़ुशि रहनि, खिलंदा मुस्कराईंदा रहनि। तव्हां बि खिलंदा मुस्कराईंदा रहो। थैंक यू अदा माजिद मलिक साहब। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, हमारे साथ है माजिद मलिक साहब और इनका फरमाइशी गाना हमने प्ले कर चुके हैं, लेकिन हम फौजिया सुमरों का गाना प्ले करेंगे अब्दुल रज़ाक की फरमाइश पर। शाहरुख खान बुल्लू हमारे साथ हैं, कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब भाई हमारे साथ हैं, जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं सखर से, कंदकोट से या फिर ढेरकी से, जहां से भी देख रहे हैं। याकूब भाई कहते हैं हाई हाई टू यू टू। और अब लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मोहतरम जनाब, केर वाले खैर सां?
0: अलहमदुल्ला, केर असां सभिनी सां गॾु?
2: सर मां मोहम्मद दीन कांधड़ो,
0: मोहम्मद दीन कांधड़ो ठड़ी मीरवा खां। कहिड़ा हाल चाल आहिनि मोहम्मद दीन कांधड़ो साहब?
2: अलहमदुल्ला, महिरबानी अलाह जी, तव्हां ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु ठाक आहे? मुंहिंजा दोस्त आहिनि दिलशाद अली कांधड़ो, कला कासिम अली कांधड़ो।
0: जी जी,
2: तमामु पसंदि कंदा पिया चवंदा पिया नाइस आहे।
0: हा हा,
2: तव्हां कीअं आहियो बाबा?
0: अलहमदुल्ला, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। तव्हां कहिड़ो कमु कार था कयो अदा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त आहे। तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो ऐं खोड़ सारो एंजॉय कयो। अच्छा, गुड यार, गुड, ज़बरदस्त। तव्हांजी आवाज़ में थोरी डिस्टर्बेंस थी अचे, कट कट कट कट कट करे थी अचे आवाज़। हा, थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अदा। हमेशा ख़ुशि रहो ऐं खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो हमेशा। और जनाब, अब लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। और जनाब, हम आपके साथ हैं रात के शाम के 7 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर असां सभिनी सां गॾु अदा?
3: शामीर अली चाचड़ पनो आके लॻा ॻाल्हायां पियो।
0: शामीर भाउ, कहिड़ा हाल चाल अथव?
3: अलहमदिल्ला, अल पाक जे एहसान मालिक जी महिरबानी लॻी पई। तव्हां पंहिंजो हाल ॿुधायो साईं? तव्हां ख़ुशि लॻा जो ॾाढो मज़न में।
0: अलहमदिल्ला, तव्हां भाउरनि जी असां सभिनी सां गॾु दुआऊं आहिनि, तव्हां हमेशा ख़ुशि रहो। इहो ॿुधायो त गानो ॿुधायां थो फौजिया सुबुह जो, कंहिंजे नाले थकणु चाहियो?
3: बसि मुंहिंजो पीरी प्यारो दोस्त आहे अब्दुल वहीद जतोई साहिब आहे, ऐं आसिफ अली चाचड़ आहे लाड़काणे खां, लुकमान चाचड़ आहे बाबू अदील अबड़ो साहिब आहे।
0: अच्छा,
3: ऐं अब्दुला आहे बंगवारा। जेके पीरी प्यारा दोस्त ॿुधनि था, सभिनी खे खोड़ सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, हमेशा ख़ुशि रहो, असांखे ॿीहर बि ज़रूर कॉल कजो। थैंक यू सो मच अदाब।
3: खुदा
0: हाफिज। हम चलाते हैं जनाब अब्दुल रज़ाक की फरमाइश पर बहुत प्यारा सा गाना, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब, फौजिया सुमरों का गाल नथो मुझी बुधी, इस गाने को एंजॉय कीजिए। और अशफाक नियाज़ी आपके साथ है शाम के 7 बजे तक।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by.
1: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है, तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है। ही पेगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: मोरो नौशहरो मीरपुर खास
3: लाड़काना
2: सखर
3: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: في كذا تيجي صورة صراحة باتي جيك وده ما بعيرة بينارو
1: तव्हां भेनरुनि जे दुआउनि मां कोन उडी वेंदुमि अञा फ़िलहाल हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु थैंक यू सो मच
0: जी
1: बिल्कुलु हलायां थो बिल्कुलु हलायां थो इहो गानो थैंक यू अला फे हमारे साथ ही जनाब बहुत प्यारी लुबना फ्रॉम खैरपुर और जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर और जनाब गर्मा गर्मी बाकी बहुत हो रही है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें ठंडे ठंडे पानी पिए ठंडे ठंडे मशरूबात पिए और जनाब जूसेस पिए लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम केरे सा सबनी सा गड
0: लुबना
1: वरी लुबना
0: जी जी वरी जी सब सा
1: अच्छा लुबना अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम लुबना जी अजी केड़ा हाल चाल है आपका नाम राजा है आप तो लड़की है अच्छा राधा राधा राधा ऑन द डांस फ्लोर राधा इज द डांस फ्लोर या ना राधा अच्छा राबिया ओके राबिया राबिया केड़ा हाल चाल है तांजा बिल्कुल ठीक ठाक हाणे लुबना चयो त तव्हांजी ईदी शॉपिंग थी वई आहे त तव्हां बि
2: 07186:50 PM This time tag is brought to you by White Ish Beauty Cream.

जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। जेको रंग भूरो, क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समातों की नजर किया। और अब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे बहुत ही

0: ऐसे लिसनर है, बहुत प्यारे से दोस्त हैं नजीर धारे जो हमारे साथ हैं, वहीद भयो, वाजिद भयो और शमन अली भयो हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है नजीर धारे जो, वहीद भयो, वाजिद भयो और शमन अली भयो, और लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: हां जी, केरे सा सबनी सा गद
1: साईं मुझे आवाज पुराणो खादम साईं सा मिन पुजारान का पोंज प्रोग्राम में शामिल थायो।
0: हां बिल्कुल जनाब, मुखे ता जी जको है आवाज से याद अचे थी पर जलूरी का आई थिंक।
1: न न न न कुर्बान अली कासकरी को गले जी गुलाम कासकरी लगी झंडो मरी करा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, झंडो मरी कहां कुर्बान कासकरी साहब, केड़ा हालचाल तन, ठीक ठाक आयो?
1: दुआओं दुआओं वाला या ऐसा कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, ता बुधायो
1: दुआ लगी भाई अजी सरबत सिंधी को अमर आवाज हुए विछोड़न को सताल के गुलाम के दुआवा करे के जो असन जी डेडिकेशन है खास काल चाचारी
0: जी
1: का गुलाम रसूल मरी अजी सोलंगी का जितके समात को बदल जो इतने जितने असन के मुसाफिर आवाज शाम जी ने विलायत अपन पंद 24 7 भलीकार है खुशा हो।
0: वालेकुम अस्सलाम है भलीकार, थैंक यू सो मच। अदा पांजो खास क्या रख जो कुर्बान खास करी साहब, थैंक यू। हमारे साथ जनाब कुर्बान खास खेली साहब, और कुर्बान खास खेली को हम सुनवाते हैं जबरदस्त सा गाना, लेकर उससे पहले जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरदा सा सबनी सा गद रफीक जतोई, वेलकम टू आवर शो रफीक, छा हाल है, केड़ा हाल चाल है ताजा?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हालात भलायूं मां तमाम सही आ,
0: फर्स्ट क्लास, मजे में।
2: हाँ
0: अच्छा, गुडा गुडा, वेरी गुडा। यो बुधायो था गर्मा गर्मी की थी हले, आई ईद जी तैयारियों काथे पहुंतियूं, आई ढोर ढगा काथे पहुंता?
2: यार असल में छाए ढोर ढगा नी मंडी सफा साथी लगी भैया।
0: अच्छा
2: हाँ,
0: तो पर तमा जानवर वठी में दायो माने ढोर ढगा खपाइन लाए?
2: हाँ ना सामने थोड़ी चना हो ना फेरा गेरा जानवर नी मंडी खत्म लगी भैया, जेंगे तो ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल मार्केट हर मू ये सोच मौको फुरे वो लुटे वो खसे वो पर मरण भी आ
2: मां तव्हांखे ॿुधायां त माल जो चारो जेको आहे न एतिरो चढ़ी वियो आहे, एतिरो चढ़ी वियो आहे जो हथ खां बेहद।
0: अच्छा,
2: पर हिन लाइ कोई कंट्रोल करण जेको आहे ई कोन शइ।
0: हा इहा त आहे वाकई, तव्हांजी शिकायत बजा आहे बिल्कुल।
2: मतलब जेका पौंटो आहे उहो 4000 जो पौंटो ॾियनि था, जेका कटी आहे उहा 47 जो था, चोकर 18 जो ॾियनि था, ऐं ॾाढो 42 थो ॾियनि, छा ॿुधायां एतिरो चढ़ी वियो आहे छा कयूं ॿुधायो थो।
0: सही ॻाल्हि आहे, माण्हू पाण खे पाले ढोर ढगनि खे पाले। ईद जा कोई वॻा, कोई जूता, कोई सैंडल?
2: सची चव न?
0: हा सची चओ।
2: कुझु बि कोन वरितो आहे।
0: हा मूं वांगे ईद सादगी सां कंदासीं। बिल्कुल जनाब, पर कंदासीं धमाके सां कंदासीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रफ़ीक, इहो ॿुधायो, सरमत जो गानो थो हलायां, विछोड़ो मारे थो, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
2: यार सरमत त मुंहिंजे दोस्त अब्दुल्ला खे पसंदि आहे, पर हुन मुंहिंजी फरमाइश न हलाई।
0: वरी कहिड़ी, वरी कहिड़ी, वरी कहिड़ी?
2: हुन सरमन जी दफ़ा फरमाइश कई हुई।
0: कहिड़ी बाबा?
2: मुंहिंजे यार जी पारत थी।
0: अच्छा मुझे यार जी पारत थी। अच्छा गाय ॿुधायो तव्हां मूंखे ज़रा।
2: मां अहिड़े ज़ाल वेठो आहे न तकरीबन 40-45 माण्हू बीठो आहे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही,
2: चवंदा अचानक चढ़ियो थी विया
0: माना टमाटर वमाटर उछलींदा
2: छा त न ख़बर अथई?
0: छा छा,
2: इहो दौरनि जो रेट न पिया त हिन करे चढ़ियो पिया दबरे
0: ॾुख लॻियो अथसि। चलो चलो कोई ॻाल्हि आहे, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो शर्मा जो गानो, वरी मां तव्हांखे शमन बि ॿुधाईंदुमि इनशाला।
2: शर्मा जो गानो अब्दुल्ला नारे जे नारे
0: कंदा आहियो
2: शर्मा खे?
0: ठीकु ठीकु ठीकु
2: ठीकु, शर्मा जे घोट जो।
0: हा वाकई ज़बरदस्त, ठीकु आहे ठीकु
2: आहे। यार ॿुधो, शर्मा जो गानो हले नी या ॿियो हिकिड़ो सिंधी सॉन्ग गाओ हले नी?
0: वरी ॿुधायो कहिड़ो, जेको बि ॿुधायो।
2: यार अथई कुझु इन तरफ़ मूंखे सोचे सूर ते जाए, मां दिलि जो मरीज़ आहियां।
0: इहो ई कहिड़ो गानो आहे? इहो ॻाल्हाए थो या गानो आहे इहो?
2: इहो माना हिकिड़ो सभु कुझु आहे में।
0: अच्छा माना पाण तूं मां पंहिंजी कैफ़ियत ॿुधायो था मूंखे, त गानो हलाइजो मां दिलि जो मरीज़ आहियां। हमेशा खुश रहो. थैंक यू रफीक. बस हाँ जहां असा दुआ कई तो लगती या बेड़ो पार थो. हाँ थैंक यू सो मच यार. बस झोलिय खड़ो खड़ी दुआ था क्यों बस हाँ बस हाँ गान तो हलया
2: हलो बस ख्याल रखो.
0: ओके ओके ओके थैंक यू. थैंक यू. हमारे साथ है जनाब रफीक जतोई और उससे पहले कुर्बान खास कली भाई थे. तो अब ये गाना चलाते हैं कुर्बान खास कली की फरमाइश पे. इस गाने को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जुलाई है जनाब काफी गर्म रहते हैं ये महीने, उसके बाद अगस्त भी आएगा वो भी थोड़ी गर्मी गर्मी में गुजरेगा, बाकी जो मिड सितंबर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या करें जनाब, शुक्र करें कि हमारे पास ये चारों महीने होते हैं जिन पर हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें तमाम किस्म के फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसे होते हैं जहां पे चार मौसम नहीं है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पे चार मौसम नहीं होते, तो जनाब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास चार मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी और खिजां बहार, जिनको हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और जनाब हर मौसम के मजे ले रहे होते हैं। तो आप भी हमारे साथ रहें और हमारे शो के मजे लेते रहें, फरमाइश करनी तो जनाब फरमाइश करें और बहुत अच्छी अच्छी तरीके से जनाब किसी को डेडिकेशन करनी है तो वो भी करें बिल्कुल जनाब, और अपनी लाइफ में आने वाले हर बंदे को इज्जत दें क्योंकि जनाब हर बंदा इज्जत का मुस्तहिक होता है, क्योंकि जब आप आज हम किसी को इज्जत देंगे तो कल इंशाल्लाह ताला उससे इज्जत मिलेगी भी सही। अगर हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो हम किसी से ये उम्मीद भी ना रखें कि लोग हमें इज्जत देंगे। तो हमेशा जनाब एक तो पॉजिटिव वाइब्स आप में से आनी चाहिए और जनाब पॉजिटिव बातें आप हमेशा करें, क्योंकि देख मायूसी और नेगेटिव चीजें तो होती है ना भरी पड़ी है दुनिया में, आप कहीं पर भी जाएं तो आपको नेगेटिव चीजें मिलेंगी, आप कहीं पर भी जाएं तो आपको नेगेटिव वाइब्स मिलेंगी, लेकिन आपके अंदर से एटलीस्ट पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव बातें ही आपके अंदर से निकलनी चाहिए ताकि जनाब आप जो है लोगों के लिए एक जिंदा दिली की मिसाल बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहीम साहब केड़ा हाल चाल आहिनि, तव्हांजी फरमाइश मां हलाए सघियो आहियां पर हींअर थो हलायां, कहिड़ी गाने जी फरमाइश हुई? तू अख बदली। एग्जैक्टली, हां जी ब्याह ठीक ठाक मज़े में? हा सॉरी छो त आदि अची वई हिकड़ी लुबना और उन असां खे ज़ोर भरियो त न मां मूंखे इहो गानो ॿुधायो त इन लाइ उन जो गानो
1: ब्रेक।
0: थैंक यू अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ जनाब रहीम भाई और इनकी फरमाइश पूरी नहीं हुई थी तो ये दोबारा से आए हैं, पर हम इनकी फरमाइश अब जरूर पूरी करेंगे। तो अख बदली, तो जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 0330001348 पर। अस्सलाम वालेकुम। केर अदा सां सभिनी सां गॾु मोहम्मद मुबीन जखरानी कंदकोट खां, कहिड़ा हाल चाल आहिनि मोहम्मद मुबीन जखरानी साहब? सफ़ा
2: अलहमदुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह इहो ॿुधायो छा कंदा आहियो तव्हां? अच्छा वांदा छो वेठा आहियो, कोई कम कार माना कोई पढ़ाई शढ़ाई? माशाल्लाह तो ॿियो कुझु बि न कजो छो त पढ़ाई ज़रूरी हूंदी आहे, पहिरीं पढ़ाई हुन खां बाद ॿियो कुझु। अच्छा इहो जी जी
2: इहो गानो
0: कहिड़ो कहिड़ो
2: बिल्कुल
0: ॾिसो मूंखे थोरो थोरो ईंदो आहे, तव्हां बि मूंखे गाए ॿुधायो ज़रा। ज़बरदस्त, मूंखे तमामु घणो फेवरेट गानो आहे, ख़बर अथव? हा इहो मां गानो प्ले कयां थो पर इन द एंड ऑफ प्रोग्राम, ओके प्रोग्राम जे एंड में जी गानो त मिली वियो आहे मूंखे, पर हाणे इहो ॿी ॿिए अधे जी फरमाइश आहे न उहा प्ले कंदासीं पहिरीं, पर तव्हांजी फरमाइश ठीकु आहे। कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? ओके ठीक आहे, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉल है जखरानी भाई, और जखरानी भाई की फरमाइश पे ये गाना जरूर सुनवाऊंगा। हम लोग जानी और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जानी, केर असां सभिनी सां गॾु?
3: सर मां गुलाम शबीर खान
0: शबीर भाउ, कहिड़ा हाल चाल अथव? अलहमदुल्ला। ऐं चक चक चक चक सफ़ा कीअं लॻो पियो आहे?
3: जी सर
0: चक सफ़ा ठीकु लॻो पियो
3: आहे।
0: ज़बरदस्त, छा कंदा आहियो शबीर भाउ? माशाल्लाह माशाल्लाह, कीअं हले थो तव्हांजो हारपो?
3: शुक्र आहे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अला तव्हांजे कारोबार में अला तव्हांजे कम में बरकत ॾे। इहो ॿुधायो गानो थो हलायां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
3: सर मुंहिंजो भाउ आहे मोहम्मद जतोई।
0: जी जी।
3: वाल साहब आहे मोहम्मद जतोई। मुंहिंजो दोस्त आहे जनरल खान जतोई।
0: जी जी।
3: जतोई बिरादरी
0: ठीकु आहे ठीकु आहे, थैंक यू बशीर भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। تھینک یو. ہمارے ساتھ ہے جناب بشیر بھائی, اور بشیر بھائی کی فرمائش پر ہم گانا چلا رہے ہیں, اور سوری بشیر بھائی کی نہیں بلکہ رحیم بھائی کی فرمائش پہ گانا چلا رہے ہیں تو آنکھ بدلی.

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका अपना शफाक आ चुका है आपके साथ। लफ्टर लंबी चौड़ी कमर्शियल ब्रेक, अब लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आय हाय हाय जनाब, कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई है, पर हम लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, ये भी चली गई, ड्रॉप हो गई कॉल। क्या हो रहा है यार, आज लगता है सिग्नल्स बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रदा सा सबनी सा घर
1: नवीदा कॉल की जा
0: नजीर
1: नवीदा नवीदा
0: नजीदा
1: नवीदा हां
0: नवीद नवीद
1: जी।
0: अच्छा नवीदा, अच्छा हाल है तां जो? ठीक ठाक
1: हाल भले हवा चला
0: फर्स्ट क्लास। छा कंदा है नवीदा? अच्छा तुम सिलाई कंदी आयो? अच्छा ओके ओके ओके। तो हाने ई जो सीजन आ, तो तुम जी सिलाई सुठी हलंदी हुंदी?
1: जी जी।
0: अच्छा गुड, तां के सामने शो की लगंदो आ?
1: शो भी आती हुंदा माचारा।
0: अच्छा
1: वो सिकी भी आती है और भी आती
0: है। जबरदस्त।
1: मां बाबा नहीं दे मुझे तो घर आया।
0: मुझे खबर आ, पर मां वो चम ये समझ में ना पिया जे त आयो छ आखिर केड़ी जिंस आयो मुख्य भी लगे पे तो नवीद नवीदा किए थी भैया भला एडो तरक्की जमानो हाँ सही सही सही कड़ो गानो बुझन चाहो था
1: गानो जो
0: है। अच्छा ओके, कें जे नाले करना चाहो? ओके ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नवीदा नवीदा खास ख्याल रखो, हमेशा खिलंदा मुस्कुरांदा रहो, जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कियो असाने शो में। वठो तो शो जी हाने नेक्स्ट कॉल, चाहूं था पांजे कॉलर के असा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: केर दा सा सबनी सा गड़ो?
2: सोना खान मस्त जे
0: बात है। सोना खान मस्तोई, कैसे हाल चाल है आपके? ठीक है
2: अलहमदुल्ला, ठीक ठाक। आप सुनाए, आपको और आपकी टीम कैसी है?
0: फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, मजे में। आप सुनाए क्या हो रहा है? और गाना चला रहा हूँ हमारा लोग जानी, ये किसके नाम करना चाहेंगे?
2: हाँ बस नाम जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, सबसे पहले अली हसन के नाम करूंगा, उसके बाद में क्या है, और उसके बाद अब्दुल्ला कलवा रहे, घोड़ा खान बनवा रहे, और आपकी पूरी टीम है, और आपको ईद मुबारक। और आप बताएं आप ईद वाले कौन से टाइम और किस टाइम आप प्रोग्राम करेंगे? अभी तो तुम्हारी मुलाकात ईद की होगी हमारे साथ?
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी, लेकिन अभी शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा हमारे ऑफिशियल पेज पर भी, और प्रोग्राम्स में भी बता दिया जाएगा कि हम कब कब आ रहे हैं आपके साथ।
2: बस इसीलिए हमने कहा आज आपके प्रोग्राम में बात करें, आपसे बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको।
0: जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे बात करके। थैंक यू सोना भाई।
2: ठीक है सर, बहुत सारा सलाम आपकी टीम को सर।
0: वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, अब हम शो को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और गाना चलाते हैं हम लोग जानी। इस गाने को सुनिएगा और रशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी और ईद पर। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह निगहबान।

0: الحمد.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: परदेही वजीर अब्बास अराग्ची चयो आहे त अमरीका सां ॻाल्हियुनि में मुसबत अकबराई थी आहे, रुगो यूरेनियम जे ज़खीरे ऐं आबनाए हुर्मुज वारे मामले ते डेडलॉक आहे। मुआदे जो हतमी मसवदो तयार करे छॾियो आहे, रुगो ॿ नुक़्ता रंडक बणियल आहिनि। अमरीका एटमी प्रोग्राम सरकारी दौरे ते तहरान हुर्मुज में बि महफ़ूज़ सफ़र लाइ अथॉरिटी क़ाइम करे छॾी आहे। अमरीकी परदेही वज़ीर मार्को रूबियो बि ईरान सां मुआदे लाइ पुरोमेंद। स्वीडन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में पाकिस्तानी टकरीअ जो किरदार अदा करे रहियो आहे। न थियो त प्लान बी बि मौजूद आहे, मुआदो थियो त आबनाए हुर्मुज खुली वेंदो। असां ॻाल्हियुनि में मुसबत अकबराई थी आहे, रुगो यूरेनियम जे ज़खीरे ऐं आबनाए हुर्मुज वारे मामले ते डेडलॉक आहे। मुआदे जो हतमी मसवदो तयार करे छॾियो आहे, रुगो ॿ नुक़्ता रंडक बणियल आहिनि। अमरीका एटमी प्रोग्राम

0: जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। मुसलसल अमन होगा तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसके शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जंग के खिलाफ नहीं है।
1: वजीर आजम ऐं फील्ड मार्शल ईरान जंग जे खात्मे लाइ कोशिशुनि में रुधल आहिनि। इसराइल अमरीका जंग जी क़ीमत समूरी दुनिया अदा करे पई। दुआगू आहियां त जंग ख़त्म थिए ऐं अवाम जूं मुआशी मुश्किलातूं घटि थियनि। जंग ख़त्म न थी त हालतूं वधीक ख़राब थींदियूं। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अमुन लाइ कम कंदड़ अलाह लाइ कम करे रहिया आहिनि। अहसास आहे त अवाम मुआशी मुश्किलात जो शिकार आहे। अवाम खे हर मुमकिन रिलीफ ॾियण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन नंदरा बि चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाकातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विच ओभर में छेकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी तहरान जा बाहिम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। फील्ड मार्शल जे तहरान दौरे बाबति तस्दीक या तरदीद न कंदुसि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शाहराह भुट्टो जे क़ायदेआबाद खां काठोड़ ताईं वारे तामीर थियल नए हिसे जो इफ़्तिताह करे छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां गॾु शाहराह भुट्टो ते सफ़र कयो ऐं टैक्स बि अदा कयो। बिलावल भुट्टो क़यूमाबाद खां कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे जे पीढ़ जो बि पथर रखियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त केटी बंदर ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत नओं पोर्ट ठाहियो वेंदो। बदीन ऐं ठठे समेत समूरी साहिली इलाइक़नि जी क़िस्मत तब्दील कंदासीं। कराचीअ में सिंध इंटरनेशनल फिनांस सेंटर बि खोलियो वेंदो। सियासी यतीम अजायो वाविला करे रहिया आहिनि। साबित करे छॾियो आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिलीवर करे सघे थी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।